समझेंगे तो तब जब हमको समझने का मन करेगा। वैसे बहुत सारी चीजें हमें सुबह शाम बचपन से लेकर के अब तक समझाई जाती हैं, कितना समझ में आया ये तो हम ही जानते हैं। 31 जुलाई निकल गई ये तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आपने 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं किया तो फिर उसके बाद फिक्र तो बनती है। फाइनेंस एक्ट 2026 के बाद अलग अलग टैक्स पेयर्स के लिए 31 अगस्त, 31 अक्टूबर और 30 नवंबर की नई डेडलाइन तय की गई है। उसके बाद भी अगर आप आहें भरते हैं तो फिर हम क्या करें। हमने तो समझा दिया, बड़े अच्छे से बता दिया कि देखिए ये है और ये नहीं, बाकी

इस वक्त हमारे चारों तरफ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि ये देखिए बहुत हेल्दी है, शैम्पू साबुन क्रीम सब कुछ हेल्दी का टैग अगर लगा होता है तो हमारा विश्वास ना बहुत ज्यादा उसके ऊपर बढ़ जाता है और यही लगता है कि हाँ ये सब कुछ तो बहुत अच्छा है। बाजार की हर चीज का हेल्दीफिकेशन हो गया है, हर आदमी अलग अलग तरह के प्रेशर में है और ये टैग इतना सक्सेसफुल है कि हम उसको संबंधों के ऊपर भी लेकर के आते हैं, कहते हैं ना हमारी दोस्ती ना बड़ी हेल्दी है। देखिए जनाब, आज ना वही वाला कल है जिस कल की फिक्र हमें कल थी, परसों का इसे तो हमें पता नहीं कह सकते कि हाँ क्या होगा, लेकिन इतना पता है कि दोस्ती का खुमार अभी तक चल रहा है। म्यूजिकल दिल्ली में भी, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे भी दोस्ती हमारी और आपकी एकदम पक्की वाली है।

और अब ऐसे माहौल में कोई ये कहे कि ना तो कोई हमारा दोस्त है ना डेट पे है लेकिन फिर भी कोई समस्या नहीं है, तो यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अकेलेपन को एक लाइफस्टाइल की तरह अब दिखा रहे हैं, और कुछ लोग बिना दोस्तों वाली जिंदगी जीने के लिए जोर भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे आपको ऐसे कई सारे कंटेंट भरे पड़े दिख जाएंगे जहां पे अकेलापन अकेलापन नहीं है बल्कि ये एक लाइफस्टाइल है। मैं, मेरा हेल्दी खाना, हमारा कुत्ता, हमारी बिल्ली और हमारे थॉट्स। लेकिन पता है मुझे क्या लगता है, मुझे तो लगता है कि सच्चाई ये है कि हमें मिलना जुलना चाहिए, क्योंकि हम सब की बुनियादी जरूरतों में से ये एक चीज है, है ना? आपको क्या लगता है? आप हमें मेल कर सकते हैं fmgoldeirdelhi@gmail.com पे बता सकते हैं कि हाँ भाई, दोस्ती हमारी सिनेमा वाली हो, पुरानी हो, जो भी हो, सुपर हिट है। अच्छे दोस्त कभी भी कंपटीशन नहीं करते, मन भेद मत भेद दोनों को छोड़ के वो आगे चलते हैं। ट्रेन वाली दोस्ती, मेट्रो वाली दोस्ती और ये रेडियो वाली दोस्ती।

0: वैसे तो हमें ब्रेक लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम सबको इंतजार इस बात का रहता है कि यार एक ब्रेक मिल जाए बस।
1: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
2: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
2: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य

इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।

फिल्म का नाम हम दोनों। साहिल लुधियानवी ने इस गाने को लिखा, जयदेव ने इसको म्यूजिक दिया, मोहम्मद रफी ने गाया और ये गाना फिल्माया गया देवानंद के ऊपर। कुछ गाने सुनने के लिए होते हैं और कुछ गाने देखने के लिए, और कुछ सुनना और देखना दोनों के लिए होते हैं। तो ये गाना एक लापरवाह और जिंदा दिल फौजी अधिकारी की भूमिका में देवानंद के ऊपर है, जो जीवन की मुश्किल पलों में भी मस्त रहने का एक मैसेज देते हैं। किरदार का अंदाज भाई वाह, चिंता रहित एकदम फिलॉसफी है कि आप बस आगे बढ़ते चले जाइए। और गीत सिखाता है कि दुखों के आगे टूटने की बजाय उनका सामना करना चाहिए, और जो मिला है उसे अगर हम अपनी किस्मत मांग लें तो क्या बुराई है।

0: अकेले नहीं, हम हैं आपके साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे, और ये है म्यूजिकल दिल्ली।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: कहते हैं कि जब संसार एक रंगमंच हो और जीवन अभिनय, तो फिर वहां पे हार जीत का

क्या लेना, चलिए हम सेलेक्ट करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जैसे कि म्यूजिकल दिल्ली है इस वक्त आपके साथ। वैसे हम सब सोचते हैं ना कि कोई तो ऐसा चमत्कार हो जाए कि बस मजा आ जाए, कुछ तो ऐसा हो जाए कि हम देखते रह जाएं। ये नहीं नहीं, इसको उल्टा कर देते हैं, कुछ तो ऐसा हो कि दुनिया हमें देखती रह जाए और पता नहीं चलता कि कब ऐसा अच्छा वाला समय बीत गया और हम वहीं खड़े के खड़े हैं। तो फिर एक एक गाने को एंजॉय कीजिए, एक एक बात सुनिए और उसके बाद भी बात न बने तो फिर आप हमें मेल कर सकते हैं fmgold@aardelhi@gmail.com।

0: की लड़ी।
1: आएगी आएगी बारिश आएगी। 3 बजे के आसपास मौसम कहता है कि भाई देखिए हम बरसेंगे जरूर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण के बारे में। भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और किशोरियों में कुपोषण की समस्या को दूर करना। और उसके साथ साथ आज पता है बड़े सारे दिन है, जैसे कि आज है नेशनल वाटरमेलन डे, तरबूज खाइए और उसके महत्व को समझिए। और दूसरा है मेवे खाने का दिन, फर्श साफ करने का दिन, एस्थर डे। ये दिन हमें ना याद दिलाते हैं कि कोई भी चीज कभी भी कम नहीं होती है और हर चीज को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं।

और अगर ये माया है तो फिर हमने ये भी पढ़ा है कि ये जो माया है ये महाठगनी है, हम जाने। तो इसी माया में हम सब ने अपना दिल लगाया है। यूं ही आप भी दिल लगाते रहे, आगे बढ़ते रहे और म्यूजिकल दिल्ली हमारे साथ सुनते रहे आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:56 हो चुके हैं और ये गीत है हम सबके लिए 1975 की फिल्म जमीर से किशोर कुमार की आवाज और एक फ्रेशनेस जो हमें एक मैसेज देती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जनभागीदारी अभियान के दौरान देशभर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के लिए मतगणना जारी है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती की जाएगी। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात में मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल बढ़त बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब

0: अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय दल के प्रदर्शन पर गर्व व्यक्त किया और भारत द्वारा 13 स्वर्ण पदकों सहित 39 पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने सभी पदक विजेताओं को उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिस्पर्धाओं के दौरान भारत के प्रतिभाशाली एथलीटों ने असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और समर्पण का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 today. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal is likely to move 56 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Meanwhile, the Rajya Sabha is scheduled to take up the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 today. Union Minister of Micro, Small and Medium Enterprises, Jitin Ram Manji, is likely to move the bill which seeks to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 be taken into consideration and passing. The meeting of heads of national statistical offices of BRICS countries will be held under the chairship of India from today till tomorrow in Lucknow. India's BRICS chairship is guided by the overarching theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, BRICS. The meeting aims on strengthening core BRICS statistical products, innovation and reform in national statistical systems, data dissemination and accessibility. President Draupadi Murmu will arrive in Odisha today on a three-day visit. During her stay, she will inaugurate Jagatguru Kripalu University in Cuttack and participate in a series of official, educational and cultural programs in Bhubaneswar, Cuttack and Ganjam districts. We have a report from our correspondent.
2: President Draupadi Murmu will arrive in Bhubaneswar this afternoon on a three-day visit to her home state of Odisha. Later in the evening, she will inaugurate Jagatguru Kripalu University at Bhara near Cuttack. Tomorrow, the President will travel by a special train from Bhubaneswar to Berhampur and later proceed by road to Taptapani in Ganjam district, where she is scheduled to offer prayers at Ma Kandhuni Devi Temple and the Shiva Temple. She will halt for the night at the Army Air Defense College at Golabandha. Elaborate security arrangements have been made with around 40 platoons of police deployed in Bhubaneswar and Cuttack. No fly zones have been declared over Berhampur railway station, the president's travel route, Taptapani temple complex, the Army Air Defense College and other designated venues to ensure foolproof security during the presidential visit. Prakash Das for Akashwani News, Bhubaneswar.
1: Counting of votes is underway for the by-elections to three assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Polling for Bankipur constituency in Bihar, Manjalpur in Gujarat and Datia in Madhya Pradesh was held on the 30th of last month. In the first round of counting for Bankipur seat, Jan Suraj Party's candidate Prashant

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए। जापान और अमेरिका ने येन को मजबूत करने के लिए संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
1: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर दो विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुश्मन देश षड्यंत्र करके भारत के युवाओं को नशे की लत में खींचने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। मादक पदार्थों की तस्करी से कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है और इसीलिए हमें प्रत्येक युवा को नशे के चंगुल से फंसने से बचाना है। उन्होंने कहा कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत होना और आत्मविश्वास से भरपूर होना

0: आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे परिवार, समाज तथा राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं।
2: सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले को रोक दिया है। इस हमले की योजना पहले से ही बनाई गई थी। ये भी संकेत है कि होर्मूज जल डमरू मध्य के प्रबंधन के बारे में भी समझौता हो सकता है। ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर भी समझौता किया जाएगा। कूटनीति की ओर ये अचानक झुकाव ऐसे समय में आया है जब मध्यस्थ अमेरिका और ईरान के बीच एक सक्रिय ढांचे को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्रीय मध्यस्थ पिछले महीने हस्ताक्षरित समझौते को फिर लागू करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि रणनीतिक जलमार्ग 60 दिनों तक बिना किसी शुल्क के खुला रहे। उधर समुद्री गलियारे के संचालन के लिए संयुक्त कार्यप्रणाली पर ईरान और ओमान के बीच बातचीत अंतिम चरण में है। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
0: पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए।
3: ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। स्थानीय जनजातीय परिषद ने क्षेत्र में शांति की मांग करते हुए स्वात शांति रैली आयोजित की थी। परिषद ने आरोप लगाया कि पुलिस की निष्क्रियता से पिछले कुछ महीनों में क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति बदतर हो गई है। विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
0: जापान और अमेरिका ने जापानी मुद्रा को 40 वर्षों के निचले स्तर पर गिरने से रोकने के लिए समन्वित येन खरीद हस्तक्षेप की पुष्टि की है। टोक्यो ने संकेत दिया है कि अगर आवश्यक हुआ तो वो और कार्रवाई को तैयार है। जापान के वित्त मंत्रालय ने पिछले सप्ताह अमरीकी वित्त विभाग के समन्वय से जापानी येन की खरीद की। वित्त मंत्री कातायामा सात्सुकी ने आज एक बयान जारी कर संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की है।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद जापानी मंत्रालय ने संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की है जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि वाशिंगटन मित्रता के प्रतीक के रूप में और वैश्विक अर्थव्यवस्था को सहयोग देने के लिए येन को मजबूत करने में मदद कर रहा है। ये कार्रवाई हाल के महीनों में येन की अत्यधिक अस्थिरता से निपटने के लिए की गई थी। अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी जापान और अमरीका के समन्वित हस्तक्षेप की पुष्टि की है। इस कार्रवाई से येन के अनियंत्रित उतार चढ़ाव को रोकने के प्रयास किए गए हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारत के खिलाड़ियों की सराहना की है। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

0: रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरिरंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कई गुना ज्यादा, तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग प्वाइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: मुख्य कोच सत्यनारायणन ने आशा व्यक्त की कि भारत 2030 के खेलों में अच्छा प्रदर्शन करेगा।
2: ओवरऑल इंडियन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आगे आने वाला हम अच्छा करेगा। मेरा एथलीट बहुत खुश है, आप लोग देख सकते हैं क्लोजिंग सेरेमनी में, इवन स्कॉटलैंड ग्लासगो लोग को भी मैं धन्यवाद बोलता है। हमारा प्रिपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ध्यान दिया है, इवन गुजरात गवर्नमेंट ऑल्सो बहुत अच्छा इंटरेस्ट ले रहा है।
0: राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। जापान और अमरीका ने येन को मजबूत करने के लिए संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good morning, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the World News. The headlines. Meeting of heads of national statistical offices of BRICS countries starts in Lucknow today. US President Donald Trump says new talks with Iran to take place today. 14 people killed in suicide attack during peace rally in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa. Japan and US confirmed joint intervention to bolster yen. And Ahmedabad formally receives the Commonwealth Games hosting rights for 2030 at the Glasgow closing ceremony. The meeting of heads of National Statistical Offices, NSO, of BRICS countries, Brazil, Russia, India, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates, UAE, will be held under the chairship of India from today in Lucknow. Our correspondent has the details.
4: India's BRICS chairship is guided by the overarching theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Within the BRICS statistics track, India has adopted the theme Quality Statistics as Driver of Change, reflecting an unwavering commitment to data quality, innovation, effective dissemination and people-centric statistical systems. The meeting aims on strengthening core BRICS statistical products, innovation and reform in national statistical systems, data dissemination and accessibility, strengthening microeconomic and sectoral statistics. The objective is to further strengthen cooperation in the areas of dissemination of statistics, innovation in statistical systems and the exchange of knowledge and best practices. Sushil Chandra Tiwari, Akashvani News, Lucknow.
3: US President Donald Trump has said the negotiations with Iran expected to take place through intermediaries are scheduled to take place today. Speaking to reporters, Trump confirmed that discussion channels were active. He revealed that diplomatic engagements involving Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar and Iran led him to halt what was originally planned as a massive attack. President Trump further indicated that an agreement could be reached regarding the management of the Strait of Hormuz, while asserting that an accord would be established concerning the denuclearization of Iran. The sudden turn towards diplomacy comes as mediators race to reactivate a dynamic framework between Washington and Tehran. In Pakistan, at least 14 people, including 5 security men, were killed in

समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण

0: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।

ही कई सारे दीवाने हैं इस वक्त हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे। ये है दिल का मेल बॉक्स, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मुसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप, सलीम अख्तर, रेशमा बेगम अलीगढ़ से दिल का मेल बॉक्स में है। हमारे साथ रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, शाजीनगर बेंगलुरु से नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता के साथ साथ हैं मास्टर जी, मारियान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, संयम मुस्कान, मास्टर जीवीएम सरधना से ही इन्होंने कई सारी मेल हमें की है, इसलिए हमने दो बार आपका नाम पढ़ दिया। वेरी सिंपल, स्वागत है आपका दिल का मेल बॉक्स में। और ये रहा आपका गाना।

कमर अवधी तो हम भी कहेंगे कि आपके मैसेजेस इस तरह से आते रहे दिल का मेल बॉक्स में तो फिर रौनक लगी रहेगी। नमस्कार करते हैं और अपनी रिक्वेस्ट भेजते हुए बोलते हैं कि भाई क्या आप हमें भूल जाती हैं? बताइए ऐसे कैसे हो सकता है। दिल का मेल बॉक्स है ही सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु सागर और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक है। नमस्कार करते हैं और बोलते हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल तन्वी बोट, अंकित कांगड़ा, किशोर नगर अमरावती से हीरामन शेंडे, सिद्धार्थ हैं और होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल हैं, सचिन खोरवाल हैं, अमन, दीपांशु। फिल्म का नाम इन्होंने बताया, जो इन्होंने अपना जो चॉइस थी वो अभी इन्होंने सुन भी ली अपनी चॉइस का गाना। और इसके अलावा हमसे नाराजगी भरे बड़े सारे जो हमारे पास मेल आते हैं वो सब लोग खुश हैं। वो खुश इसलिए हैं क्योंकि कुछ दिन ऐसे मैजिकल से होते हैं ना कि हमको अच्छा लगता है और हम सोचते हैं कि यार हमने तो ऐसे बोल दिया था। ये है नवाब अहमद, अरहान अहमद, सूफिया नवाब और शवाना भारती बल्ली मारान से, और ये रहा आपका गाना।

0: वैसे मुश्किल तो आपके लिए भी नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी चॉइस हो यहाँ पे आपका गाना, तो फिर आप हमें मेल कीजिए fmgoldairdelhi@gmail.com, बताइए कि कौन सा गाना है और आपको क्यों अच्छा लगता है।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर,
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
2: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026।

0: बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक YouTube चैनल पर लाइव प्रसारण।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: दिल का मेल बॉक्स है ये। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हेना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। दिल्ली रेडियो लिसनर्स क्लब से हैं नवाब अहमद भारती, बबलू कश्यप, महेश अग्रवाल, अशरफ अली, सिराज मिथुन, संजय डींगिया और उसके अलावा सलीम हैं, रेशमा बेगम हैं अलीगढ़ से, जिन्होंने इस गाने की

ऐसा ही कुछ अंदाज हमारा भी है कि एक मेल को देखा तो ऐसा लगा जिसमें खुशी है, नाराजगी है और दिल का मेल बॉक्स बिल्कुल फुल है। नबी हसन अब्बासी हैं, शहनाज अब्बासी हैं, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम यशफ, रसीद वारसी और किदवई नगर सिद्धूपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबीहा अंजुमन खान हैं। आपकी मेहरबानी होगी, हमारा नाम शामिल कर लीजिए तो फिर हो गई। होस्ट मैम जी, गुड मॉर्निंग करते हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से। तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष, चैतन्य मस्कीन और मेघा हैं। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु, रिधान खुराना हैं और सत्यप्रकाश सनोठिया हैं रोहिणी दिल्ली से। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी और ये सब लोग मुझे कहते हैं नमस्ते। नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो गया है 10:55 और ये हैं मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु सागर और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक। इसके अलावा और भी बहुत सारे जैसे कि मालवा रेडियो श्रोता संघ हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकर, नायमा, श्रीमती रंजूबाई हैं, युवराज सिंह हैं, शिवांगी धाकर हैं, बबलू कश्यप हैं, नवाब अहमद हैं, अशरफ अली, इनका नाम हमने पहले भी ले लिया है, मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन, शहनाज, नवेद हसन, सुहेल, अनम, इनका भी नाम आ चुका है। किदवई नगर सिद्धूपुरा टाउन से जुबैर अली, इनको भी आप सुन चुके हैं। तो आई एम श्योर आप सब ने अपनी पसंद के सारे गाने जरूर जरूर से सुन लिए होंगे, लेकिन एक गुजारिश है इनकी भी। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा और मैं हूं इंदु आपके साथ दिल का मेल बॉक्स में और ये गाना है फिल्म तुम्हारी कसम से।

जवाब तो जरूर आएगा, बस आप हमें मेल यूं ही करते रहिए और अपनी बात बताते रहिए अपने गाने के साथ। जैसे कि ये अब्बासी परिवार हमसे कहता है कि देखिए हमारी चॉइस का गाना प्ले कर दीजिए ताकि थोड़ी हम राहत की सांस लें, सोमवार को हम मिले। तो सोमवार तो अभी चल रहा है, अभी तो हम मिल ही रहे हैं। फिलहाल समय हो रहा है समाचारों का, उसके बाद फिर से होगी आपसे मुलाकात।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंकार बहिस्साक्षी विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल और दतिया सीट से भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है, जहां 20 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। त्रिसैन्य भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम का 4था आयोजन आज नई दिल्ली में हो रहा है। 4 सप्ताह का यह पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है और संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र द्वारा समन्वित है। इस पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबुल कस्बे में थाने के सामने से गुजर रही थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा

आइए चलते हैं हम एक ऐसी जगह, अरब सागर के तट पे खड़ा श्रद्धा का अमर प्रमाण है, बार बार जो फिर से उभरा वो पावन श्री सोमनाथ है, जहां चंद्र ने तप कर पाया महादेव का पावन साथ, ज्योतिर्लिंग बन स्वयं विराजे, जग में प्रसिद्ध हुआ सोमनाथ। तो आज तस्वीर है सोमनाथ की, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे ये है तस्वीर, और तस्वीर है ये सोमनाथ की, जहां लहरें भी शीश झुकाती हैं, पवन सुनाती है शिव की बात। आस्था, साहस और विश्वास का अमर प्रतीक है सोमनाथ। आप गए हैं? अगर नहीं तो फिर आज मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाऊंगी, और अगर जा चुके हैं तो एक बार फिर से उस जगह को याद कीजिए और फिर बताइए कि कितना अच्छा और पावन है वहाँ पे। एक बार जो होके आए उसकी यादें अपने आप में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगी।

तो फिर मैं आपका ये पूरा का पूरा ट्रिप प्लान करती हूँ। तो सुबह सोमनाथ मंदिर में दर्शन और आरती देखिए, मंदिर के पीछे अरब सागर का जो सुंदर व्यू है उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। त्रिवेणी संगम जाइए, फिर उसके बाद बलका तीर्थ और गीता मंदिर में घूमिए। शाम को मंदिर की आरती और लाइट एंड साउंड शो देखना, उसको मिस बिल्कुल नहीं करना है। आप आराम से, बड़े आराम से सोमनाथ पहुंच सकते हैं। वेरावर रेलवे स्टेशन ट्रेन से अगर जाते हैं, और अगर फ्लाइट से जाते हैं तो दीव एयरपोर्ट सबसे पास है, और उसके बाद सड़क मार्ग से आप सोमनाथ पहुंच जाइए। और फिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है सोमनाथ, उसकी आप कीजिए दर्शन, और उसके आसपास की चीजें उनको तो देखना बिल्कुल भी आप भूलिएगा मत। और ये सारी की सारी चीजें आपको सोमनाथ में मिलेंगी। तो फिर आज तस्वीर है सोमनाथ की, जो है गुजरात में।

सोमनाथ है तो जैसा कि हर जगह की एक कहानी होती है तो फिर एक छोटी सी कहानी हम भी आपको सुना दें। कहते हैं कि सबसे पहले चंद्रदेव यानी कि सोम ने भगवान शिव की आराधना करके इस मंदिर का निर्माण कराया था, इसलिए इसका नाम सोमनाथ पड़ा। इतिहास में इस मंदिर को कई बार आक्रमणों में नुकसान पहुंचा लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। और ये मंदिर जब आप देखेंगे तो इसका जो स्टाइल है वो चालुक्य शैली में और उस तरह के ये आर्किटेक्ट में बना हुआ है और जो इसकी ऊंचाई है लगभग 50 मीटर है और शिखर पर जो लगा ध्वज है वो दिन में कई बार बदला जाता है। अगर आपको मौका लगे तो आप इसको भी देखिएगा। मंदिर अरब सागर के किनारे है जहां से सूर्यास्त का जो नजारा है वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। और घूमने के लिए सबसे अच्छा वक्त है अक्टूबर से मार्च तक, यहाँ का मौसम सुहाना रहता है। जाइए, घूम के आइए, देखिए सोमनाथ गुजरात का, बहुत अच्छा लगेगा।

एप्स बनाती हैं। इस वक्त हम हैं तस्वीर में और तस्वीर है ये सोमनाथ गुजरात की। तो यहाँ पे जाइए तो फिर बिना गुजराती थाली खाए बिना तो आप आ नहीं सकते हैं, तो वो तो आपको ज़रूर टेस्ट करनी होगी, जिसमें दाल कढ़ी रोटी सब्जी खिचड़ी मिठाई होगी। और उसके अलावा काठियावाड़ी थाली भी आप इसका मज़ा ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा ढोकला खांडवी थेपला जो कि बहुत ही फेमस गुजरात के स्नैक्स हैं। और उसके बाद फिर आप आइए आगे बढ़िए, गाठिया और चाय जाओ वहाँ का एक बहुत ही फेमस नाश्ता है वो लीजिए। फिर उसके बाद मौसम के हिसाब से अगर आप पहुँचे हैं तो आमरस गुजरात की खास मिठास है वो मिलेगा। ये थोड़ा सा और आप आगे जाएंगे तो पास के वेरावल में आपको फ्रेश सी फूड भी वहाँ का बहुत फेमस है, और यहाँ से आप गुजराती हस्तशिल्प की चीज़ें ले सकते हैं। वैसे जहाँ भी कहीं जाना होता है तो हम आपको बताते हैं कि क्या क्या करें, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर ये भी हम सबको ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर जाएँ तो हम क्या ना करें। तो अपने मंदिर के अंदर मोबाइल आपको नहीं ले जाना है, कैमरे और जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो सब प्रतिबंध है, उसके ऊपर वो नहीं ले जा सकते। इसलिए जाने से पहले नियम को अच्छी तरह से समझ लें और उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करें।

0: क्या आप जानते हैं कि सोमनाथ के ऊपर बहुत सारा ऐसा कुछ आपको पढ़ने को ही मिल जाएगा जिससे बहुत अच्छा लगेगा। तो जब भी मौका लगे, आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, वहां से जुड़ी हुई चीजों को मतलब किताब की शक्ल में ले जाएं और पढ़ें, तो वो चीज ना देखने में और भी अच्छी लगती है और लगता है कि हाँ, जो हमारी जानकारी है वो काफी उम्दा हो गई है। ये है तस्वीर सोमनाथ की।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर,
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
2: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026,
2: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: れソール。
1: ババ抜かれショール。
0: あれババショールないソールソールソール。

और अगर सावन के महीने में आप सोमनाथ जाएंगे तो वहां की जो लबधक है, जो रौनक है, वो देखते ही बनती है। अरब सागर की लहरें ऐसा लगता है कि जैसे गा रही हो शिव महिमा का मधुर गान, और वहां विराजे भोले शंकर, यही है हमारी पहचान। सोमनाथ की पावन धरती श्रद्धा का अनुपम वरदान है, बार बार जो फिर से जागा बना अटल विश्वास महान। और वहां पे जाने के बाद आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि बहुत अच्छा लगेगा मंदिर का जो मुख्य आकर्षण है शिवलिंग, यहाँ पे आप जब देखेंगे, दर्शन करेंगे तो मतलब एक अलग अनुभूति होती है। नंदी महाराज की विशाल प्रतिमा है जो शिवलिंग के सामने विराजमान है, भक्त पहले नंदी के दर्शन करते हैं तो आप वहां जा सकते हैं। सुंदर नक्काशी है, बहुत प्यारी, वो भी देखिए। और जो गर्भगृह है वहां पे बहुत ही शांत, और जो पूरा का पूरा वातावरण है काफी अच्छा है। सुबह और शाम, दोपहर की आरती, ये आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और उसके बाद

मंदिर अरब सागर के किनारे है, इसलिए बाहर से समुद्र का मनमोहक नजारा दिखाई देता है और बहुत अच्छा लगता है। और पता है वहीं पास में एक बाण स्तंभ है, उस पे जरूर पढ़िएगा। वहाँ पे एक लिखा हुआ है कि इस बिंदु से दक्षिण दिशा में अंटार्कटिका तक बीच में कोई भी भूमि नहीं है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है छोटी छोटी डिटेलिंग को जानना। आप भी करके देखिए।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

का स्वागत है। ये है तस्वीर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। सोमनाथ मंदिर जो कि दक्षिण एशिया स्थित भारतवर्ष के पश्चिम छोर पे गुजरात प्रदेश में है,

घूमिए, जितना हो सके घूमिए, जैसा कि हर बार हम तस्वीर में आपसे यही कहते हैं, और सोमनाथ आपको बहुत अच्छा लगेगा। कई सारी चीजें याद आएंगी, जैसे कि बुत जो टूटे तो किसी तरह बना लेंगे उन्हें, टुकड़े टुकड़े सही दामन में उठा लेंगे उन्हें, फिर से उजड़े हुए सीने में सजा लेंगे उन्हें। और तुम बनाओ तो खुदा जाने बनाओ क्या, अपने जैसा ही बनाया तो कयामत होगी, प्यार होगा न जमाने में मोहब्बत होगी। और ये जो यात्राएं होती हैं ना, ये हमें सिखाती हैं कि हमें किस तरह से एक होके रहना है। ये हमें सिखाती हैं कि बहुत कुछ है जो अभी भी हम जान नहीं पाए हैं। और अगर ये बोध है हमें कि हमें तो सब कुछ पता है, तो असल में हमें पता ही नहीं कि हमें क्या नहीं पता है। कीजिए यात्रा और बनाइए अपने आप को बहुत धनवान। यही हम कहते हैं हर बार आपसे, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। तस्वीर आपको कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर।

खाए ना खाए ते गल मिठी मिठी जरूर बोले। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर से मिलने के लिए 12 बजने वाले हैं। अब समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज 3 दिवसीय ओडिशा यात्रा का कार्यक्रम है। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल और दतिया सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है, जहां 20 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी बाधित रही। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की। विपक्ष के सदस्यों ने फिर नीट पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया। विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
1: सदन चर्चा संवाद के लिए, अपने विचार अभिव्यक्ति रखने के लिए, अपने मत रखने के लिए, अगर असहमति है तो भी सदन के अंदर अपने मत विचार से अभिव्यक्त की जाती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें। नियोजित तरीके से सदन बाधित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सहारोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया है। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम की धुन के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में

में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 당근. लेकर ढेर सारी जानकारियों और मनोरंजन प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। और आज के अंक में आपके साथ है आपकी रेडियो सखी कल्पना
1: और रश्मि कुकरेती। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: और आप हमें सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही इंद्रप्रस्थ चैनल यानी कि मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर।
1: तो दोस्तों, कहते हैं ना, अगर मन में इंद्रधनुष देखने की चाहत हो तो भाई थोड़ी सी बरसात और थोड़ी दुश्वारियां भी देखनी पड़ती है। यानी जीवन में सफलता पाने के लिए रास्ते में कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। और भाई कठिनाइयां होती है कल्पना, तो फिर याद आते हैं हमें भगवान। और आज सावन महीने का पहला सोमवार है और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को सावन का जो मास है बहुत प्रिय है और उनकी कृपा पाने के लिए लोग सावन के सोमवार का व्रत भी करते हैं।
0: बिल्कुल, और महादेव को प्रसन्न करने के लिए मैंने तो देखा है कि पूरे सावन कांवड़िए भी लंबी लंबी यात्राएं तय करते हैं और भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए वो अपनी मनोकामना पूरी हो इसलिए करते हैं। तो इसी से संबंधित है आज का हमारा प्रश्न भी कि श्रोताओं, जब आप व्रत या उपवास करते हैं तो आप क्या खाना पसंद करते हैं? तो आपके जो जवाब हैं वो आपको हमें ईमेल करने हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो चलिए अब हम भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाते हैं और उन्हें स्मरण करते हैं इस भजन के साथ।

0: श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे केदारनाथ फिल्म से, जिसे गाया अमित त्रिवेदी ने, और भक्ति के बाद कुछ बात देशभक्ति की, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
1: जी, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां किसने नहीं सुनी होंगी, कल्पना, है ना?
0: बिल्कुल, सबने ही सुनी होंगी। और भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, वध और पंचवटी जैसी महान कृतियों के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी की आज है जयंती, और उन्हें हमारी पूरी टीम की तरफ से सादर नमन,
1: श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं एफएम गोल्ड के स्टूडियो से। और साथ ही याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के महान गीतकार और उर्दू के प्रसिद्ध शायर शकील बदाउनी साहब को, चौदहवीं का चांद और प्यार किया तो डरना क्या, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, न जाओ सैया छुड़ा के मैया, और कहीं दीप जले कहीं दिल जैसे काल जयी गीत उन्होंने लिखे। और तीन बार, कल्पना, उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, और उनकी जयंती पर उन्हें हम सादर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो सुन ले कल्पना, उन्हीं का लिखा एक गीत।
0: जी बिल्कुल।

0: दोस्तों ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे गंगा जमुना फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर जी ने। और अब हम बढ़ते हैं अपने ईमेल्स की ओर, क्योंकि हमने शुरुआत में ही एक प्रश्न अपने श्रोताओं से पूछा था कि भाई आपको व्रत में क्या खाना पसंद है। तो हमारे श्रोता हैं कुछ, तो उन्होंने हमें ईमेल भेजा है। तो सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ ईमेल नवीन कुमार जी का।
1: नवीन कुमार
0: दो ईमेल आए हैं, एक नवीन कुमार जी हैं और एक नवीन भाटिया जी हैं। तो नवीन कुमार जी लिखते हैं कि नमस्कार, मैं नवीन कुमार आपका नियमित श्रोता, और आज के प्रश्न का मेरा उत्तर है कि उपवास में मुझे फल, मखाने और सिंघाड़े के आटे से बने व्यंजन सबसे ज्यादा पसंद है। वे स्वादिष्ट भी होते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं। हमारे श्रोता कितने जागरूक हैं।
1: जी बिल्कुल, और देखिए जरूरी तो नहीं है कि सभी का उपवास हो। तो मधु जी कह रही हैं, मधु किरण जागृति इनक्लेव दिल्ली से कह रही हैं कि मुझे तो सावन में बारिश होते हुए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय को जो है पीना और परिवार को खिलाना बहुत पसंद है। और साथ में एसपी गोयल सतप्रकाश सनोठिया रोहिणी से जुड़ गए हैं हमारे साथ। वो कह रहे हैं व्रत में हल्का फुल्का फलाहार और दूध आदि लेना चाहिए, पर केवल इतना लेना चाहिए कि पेट को बिल्कुल पता भी ना चले। बहुत अच्छी,
0: बिल्कुल ऐसे ही। देखिए नवीन भाटिया जी ने भी यही बात कही है कि वो जो है दूध तो लेते ही हैं, साथ ही वो सिंघाड़े के आटे से बने जो व्यंजन होते हैं वो खाते हैं, क्योंकि उनका उपवास रहता है।
1: जी, और भाई सावन में प्रकाश गोगिया जी कह रहे हैं कि मुझे तो खीर घेवर बहुत पसंद है। भाई घेवर और सावन का तो हम कहेंगे चोली दामन का साथ है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो हमारे श्रोता ऐसे ही हमें ईमेल करते रहें और हमें भेजते रहें अपने उत्तर fmgoldga@gmail.com पर। और अब हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी जानकारी भी आपको देनी जरूरी है श्रोताओं, क्योंकि रोजाना ही हम दिन विशेष की बात करते हैं, लेकिन ये जो पूरा सप्ताह है वो

0: भी हम महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर वर्ष 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह, जिसका उद्देश्य माताओं को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक करना और शिशुओं के स्वस्थ विकास को बढ़ावा देना है, क्योंकि वही बड़े होकर हमारे देश के भावी कर्णधार बनने वाले हैं।
1: जी, और साथ ही 3 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस, जिसका उद्देश्य प्रत्यारोपण के महत्व को समझना, अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और अंगदाताओं और चिकित्सकों के योगदान का सम्मान करना है। और कल्पना, कहा भी गया है कि अंगदान महादान है ना, जीवन दान, तो हम भी क्यों ना दिल बड़ा रखें और इस दिन के महत्व को समझें और अंगदान जैसी मानवीय पहलू से जुड़ें।
0: बिल्कुल जुड़ें, और साथ ही साथ एक मधुर सा गीत भी सुने हमारे श्रोता, 3 देवियां फिल्म से, जिसे गाया है लता।

0: वाह क्या बात है।
1: और देखो ना, हमारे भारत की बेटियों ने न सिर्फ आंचल का परचम बनाया है बल्कि भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स की हम बात कर रहे हैं तो भारत की बेटियों ने अपने दमदार प्रदर्शन से पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है।
0: जी, और आइए बात करते हैं भारत की उन बेटियों की। तो भाई सबसे पहले वेट लिफ्टिंग की, मीराबाई चानू ने महिला 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और साथ ही ज्ञानेश्वरी यादव ने भी रजत पदक जीता 53 किलोग्राम वर्ग में। और अस्मिता डे ने और यामिनी मौर्य ने जो है अस्मिता डे ने जो स्वर्ण पदक जीता और यामिनी मौर्य ने फिर रजत पदक जीता। और फिर बॉक्सिंग में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।
1: बिल्कुल, बॉक्सिंग की बात करें तो भारत की बेटियों ने शानदार मुक्केबाजी का प्रदर्शन करते हुए देश को 5 स्वर्ण पदक दिलाए, जिनमें साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, जैस्मिन लांबोरिया, प्रिया घंगास और अरुंधति चौधरी ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण जीतकर भारत को गौरवान्वित किया। पैरा एथलेटिक्स में भी शर्मिला धनकर ने महिला शॉर्ट पुट PF57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि एथलेटिक्स में सीमा कालीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीतकर भारत की झोली में एक और उपलब्धि जोड़ी है।
0: तो भाई कल्पना, इन सभी बेटियों ने अपने साहस, मेहनत और प्रतिभा से ये साबित कर दिया कि भारतीय महिलाएं आज विश्व खेल मंच पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। पूरे देश को अपनी इन बेटियों पर गर्व है और इन पूरे खेलों के दौरान हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और जो समर्पण का जो परिचय दिया है, उनकी मेहनत हमारे युवाओं को निरंतर प्रेरित करती रहेगी।

0: और देखिए, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आखिरकार खत्म हो गए हैं और एक खूबसूरत सी क्लोजिंग सेरेमनी के साथ इन खेलों का अंत हो गया है। और इस क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय दल का नेतृत्व गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर जैस्मिन लांबोरिया के पास रहा।
1: जी, और कल्पना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत के 13 स्वर्ण पदकों सहित 39 पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की है, सभी पदक विजेताओं को उन्होंने बधाई दी है। और साथ में बेटियों ने, भारत की बेटियों का जो प्रदर्शन है वो बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन रहा।
0: बिल्कुल, और देखिए, इस पे मुझे एक शेर याद आता है।
1: जी बिल्कुल,
0: कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो ये सांचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था।

0: दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे सीता और गीता फिल्म से, जिसे गाया मन्ना डे और आशा भोसले ने।
1: और यहाँ पर भाई खेलों के बाद जो खाने पीने की बात जो कर रही थी तुम, तो ख्याला से उमेश कुमार जी कह रहे हैं कि मैं तो सावन में हमेशा नमकीन चीजें ही खाता हूँ, मुझे तो चाय पकौड़े बहुत पसंद है। और साथ ही मनोहर लाल गांधी जी कह रहे हैं विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से कि सावन के महीने में रिमझिम बरसात हो तो सबसे पहले काम बारिश के साथ गाने सुनता हूँ और साथ में भाई चाय पकौड़े हो जाए तो क्या बात है, नमस्कार कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ गए हैं रचना, सुमन, प्रियंका, मांगेराम, और वो कह रहे हैं नुहिया वाली सिरसा से कि हम तो व्रत के खाने के लिए आलू का हलवा और केला खाते हैं जी, आज हमारा सभी का उपवास है, वाह क्या बात है। और इसके अलावा हमारे पास एक और मेल आ गई है, वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो एक फरमाइश लिखकर भेजी है, मिस्कीन परिवार, विष्णु मिस्कीन, रितिका, वाणी मिस्कीन और आवर मिस्कीन, लेकिन हम बता दें ये फरमाइशों का कार्यक्रम नहीं है, ये तो घर आंगन है, आपका अपना कार्यक्रम, आपका अपना घर आंगन, आपके परिवार का कार्यक्रम। तो जो हम सवाल पूछते हैं ना कि सावन में आपको क्या पसंद है, आज के दिन व्रत के उपवास के दिन क्या खाते हैं। एक और हमारे पास मेल आ गया है सत्यप्रकाश सनोटिया रोहिणी से, कह रहे हैं कॉमनवेल्थ गेमों में जो अभी हमने बात की थी ना कल्पना, उसके बारे में कह रहे हैं कि भाई बेटियों ने ऐसा कमाल कर दिया, जीतकर सोना चांदी तिरंगा आसमान में लहराया और हर बाधा को पार कर रच दिया नया इतिहास, पूरे भारत का मान बढ़ाया और जगाया नया विश्वास। भाई वाह क्या कविता है। मुझे लग रहा है कल्पना कि तुम्हारी कविताओं से प्रेरित होकर हमारे श्रोता भी कहते हैं ना कवि बन गए हैं घर आंगन के प्यार में।
0: बिल्कुल, हमारे श्रोता सुनते रहते हैं तो कहते हैं ना कि असर होता है संगत का, तो बातों का विचारों का भी संक्रमण होता है, असर होता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, ईमेल एक और मेरे पास आया, अभी आप बोल रही थी कि आलू की बात कर रही थी कि भाई आलू का हलवा पसंद है, तो मुझे लगता है आलू के प्रेमी ज्यादा हैं। तो राधा शुक्ला जी लिखती हैं कि मुझे भी आलू बहुत पसंद है, आलू फ्राई बहुत पसंद है, लेकिन साबुदाना खिचड़ी भी मैं खा लेती हूँ, पर आलू मेरा बहुत प्रिय है, तो उन्हें आलू खाना बहुत पसंद है। और ऐसे ही प्रदीप खंडेलवाल भी लिखते हैं कि भाई हम तो खाने के लिए ही बचपन में उपवास किया करते थे।
1: क्या बात है ये बात भाई, उपवास करना और खाने की इच्छा होना ये दो अलग बातें हैं, लेकिन हमारे श्रोता तो कुछ भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही। और देखिए एक और ईमेल है, गौरी शंकर वर्मा जी कहते हैं कि आप दोनों बेटियों को राम राम, वैसे हफ्ते में एक दिन व्रत करना चाहिए, इससे शरीर ठीक रहता है। अब हम कितनी भी कोशिश करें कुछ ना कुछ खा लेते हैं, लेकिन व्रत के बहाने आदमी खाता नहीं है, कमी खाता है, इसलिए शरीर को भी आराम मिलता है।
1: देखिए व्रत, उपवास और त्योहार जो है वो हमारी संस्कृति में से ऐसे जुड़े हुए हैं और ये हमारे जीवन शैली का तरीका ऐसा है कि जो हम प्रसन्न भी रहे और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से प्रसन्न रहें, खुश रहें। और साथ में सुदर्शन मुखी जी हमसे जुड़ गए हैं शांति नगर सोनीपत से, और वो कह रहे हैं उपवास में तो हम फल का आहार लेना पसंद करते हैं क्योंकि फल से शुद्ध और शुभ कोई हो ही नहीं सकता, शाकाहारी है आहार है, तो आपको परिवार जो है वो सावन मास और जीवन बहुत सुख हो, शुभ हो और सुखद हो, कोटि धन्यवाद। भाई वाह क्या बात,
0: बिल्कुल सही, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और सावन के मौसम का आनंद लीजिए। फिलहाल तो ये प्यारा सा गीत सुनिए।

0: दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे हाथी मेरे साथी फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।
1: जी, और उपवास का जो हमने खाना पूछा था ना कल्पना, तो ऋचा अवस्थी कह रही हैं कि आई लव साबूदाना की खिचड़ी, है ना, खिचड़ी भाषा ही बोल दी उन्होंने आई लव। और साथ में सुनील प्रजापति वो कह रहे हैं कि भाई उपवास में ज्यादा मसालेदार खाना मैं अवॉइड करता हूँ और जहां तक हो सके तो फल ही खाता हूँ। तो अच्छी बात है, सुनील प्रजापति जी है पुणे महाराष्ट्र से, तो ये तो अच्छी बात है। देखिए, आप थोड़ा सा हल्का खाएं हैं और ऐसा खाएं कि भाई आप गतिशील भी रहें और आलस भी ना हो, है ना।
0: बिल्कुल सही बात कही। और देखिए, भोजन तो आप अपने शरीर के लिए लेते ही हैं, लेकिन जो पर्यावरण है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कैसे वातावरण में रहते हैं, किस प्रकार का जो माहौल है जिसमें आप सांस लेते हैं, आपके आसपास कैसा मौसम रहता है, हरियाली रहती है या कूड़ा कचरा रहता है।
1: कहीं और लेकर जा रही हो तुम।
0: बिल्कुल, हम इस पर भी बात करेंगे कि भाई देखो, आजकल क्या है कि प्लास्टिक को हम बेकार समझकर कूड़े में फेंक देते हैं, और वही किसी दिन कभी किसी स्कूल, पार्क या सड़क किनारे आपको आरामदायक बैठने की जगह भी बन सकता है। तो ऐसी ही एक उदाहरण की हम बात

0: करेंगे। बिहार के सीतामढ़ी ने वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे को संपदा में बदलने की दिशा में एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक की थैलियां, डिस्पोजेबल कप, प्लेट, चम्मच और पैकेजिंग सामग्री को इकट्ठा कर उसकी रिसाइकलिंग की जा रही है और इससे आकर्षक, मजबूत और टिकाऊ बेंच बनाई जा रही है।
1: यानी जो प्लास्टिक पहले नदियों, खेतों और कूड़े के ढेर में प्रदूषण फैला रहा था, वही अब लोगों के काम आ रहा है। वेस्ट टू वेल्थ यानी सिर्फ कचरे का निपटान करना नहीं है, बल्कि उसे एक नई उपयोगी वस्तु में बदलकर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ प्राप्त करना है। और इस पहल से ना कल्पना बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। भाई जैसे प्लास्टिक प्रदूषण कम हो रहा है, कचरे का बेहतर प्रबंधन हो रहा है और सार्वजनिक स्थानों के लिए टिकाऊ बेंच भी तैयार हो रही है और रिसाइकलिंग उद्योग और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं, पर्यावरण साफ सुथरा हो रहा है और सबसे बड़ी बात लोगों में रिड्यूस, रियूज और रिसाइकिल यानी जो तीन आर हैं वो उसकी सोच मजबूत हो रही है।
0: बिल्कुल सही बात है। और देखिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पहल की सराहना मन की बात कार्यक्रम में की है, तो हमें अपने जीवन में इसे उतारने का भी संकल्प करना चाहिए। और ये बहुत आसान है क्योंकि यदि हम अपने घरों में गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और रिसाइकलिंग की आदत अपनाएं, तो हम भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, देखिए हमें याद रखना है कि कचरा तभी तक कचरा है जब तक हम उसकी उपयोगिता को नहीं पहचानते। सही सोच और सही तकनीक से वही कचरा बन सकता है भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी। और जब कचरे का सदुपयोग होने लग जाए ना कल्पना, तो भाई रास्ते भी साफ सुथरे होंगे और पर्यावरण भी हरा भरा रहेगा।

0: श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे आदमी फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। और आइए अब बात करते हैं थोड़ी सी मौसम के अनुसार कि भाई मुझे दो पंक्तियां याद आती, मैं सुना दूं।
1: जी बिल्कुल।
0: कि बरसे सावन भीगे मन मुस्कानों की हो बौछार, रूठे रिश्ते फिर से महके मिट जाए हर तकरार।
1: भाई क्या बात है, आज सावन का सोमवार है। मैं देख रही हूँ तुम बिल्कुल सावनी सावनी हो रखी हो और हरे रंग के कपड़े भी पहन रखे हैं सावन के अनुसार। और भाई क्यों ना हो, जी हाँ, हरी चूड़ियां भी हैं। भाई क्या बात है। तो भाई भोले बाबा के भक्तों के लिए तो आज का दिन बड़ा विशेष है। हमने गीत भी शुरुआत ऐसे ही किया था, लेकिन सावन की तो बात ही क्या है ना। तरह तरह के त्योहार आते हैं, तरह तरह के श्रावणी मेले लगते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, जब धरती पर सावन बरसता है तो दिलों में भी अपनापन खिल उठता है। सावन सिर्फ मौसम का नाम नहीं बल्कि रिश्तों की मिठास का एहसास ही है। तो सबसे पहले देखो, इस बार की मैं बात करूं तो देश प्रेम के भाव भरता हुआ स्वतंत्रता दिवस आएगा और वो हमें याद दिलाता है कि देश के साथ हमारा रिश्ता कितना अनमोल है।
1: और पूरा माह जो है वो तरह तरह के त्योहारों से भरा हुआ है। हरियाली तीज आएगी, नागपंचमी आएगी और रक्षाबंधन जैसे जो पावन पर्व है वो हमें याद दिलाते हैं कि रिश्ते जो है कल्पना केवल खून के नहीं होते बल्कि प्रेम और विश्वास और समय के से भी बनते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हम अपनों के लिए समय निकालना भूल जाते हैं, लेकिन सावन हमें ठहरना सिखाता है, मिलना सिखाता है, मुस्कुराना, हालचाल पूछना और दिलों की दूरियां मिटाना सिखाता है। जैसे बारिश की फुहारें ना सूखी धरती को नई हरियाली देती है ना, वैसे ही दोस्तों प्यार भरे जो दो शब्द होते हैं और थोड़ा सा अपनापन जब मिल जाता है तो भाई रिश्तों में भी सावन आ जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो आइए इस सावन केवल पेड़ पौधों को ही नहीं, अपने रिश्तों को भी स्नेह, विश्वास और संवाद की बारिश से सींचे, क्योंकि रिश्तों की असली हरियाली दिलों के जुड़े रहने में ही है। और इस बात पर ये दो पंक्तियां और मैं अपने श्रोताओं के लिए कहना चाहती हूँ कि प्रेम भरोसे अपने पन की रखें सदा पहचान, रिश्तों की हरियाली से ही खिलता है इंसान। तो आइए इस सावन सिर्फ धरती ही नहीं अपने रिश्तों को भी स्नेह की फुहार से सींचे, यही है इस मौसम का सबसे
1: सुंदर संदेश।

0: दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे पड़ गए झूले बहु बेगम फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और आशा भोंसले ने। देखिए, झूले पड़ते हैं तो झूला झुलाने वाला भी कोई चाहिए होता है, और फिर जब वो आता है झूला झुलाता है तो सावन का असली आनंद आता है
1: जी। और एक मेल पढ़ देती हूँ, ये मेल हमें प्राप्त हुई है मयूर विहार से। सुरभि कह रही है कि उपवास का भोजन ऐसा होना चाहिए जो ऊर्जा दे, पचने में हल्का हो और लंबे समय तक पेट भरा रखे। तो वो कह रही है उपवास में जो कुछ लोकप्रिय व्यंजन और पौष्टिक भोजनों का उन्होंने नाम लिखकर भेजा है, कह रहे भाई साबूदाना खिचड़ी या कुट्टू के आटे की रोटी, दही के साथ आलू की सब्जी, सिंघाड़े के आटे का चीरा या हलवा, सामक के व्रत के चावल या खिचड़ी और पुलाव, भुने हुए मखाने, मूंगफली और दही, उबले और सेंधे नमक वाले आलू, ताजे फल जैसे केला, सेब, पपीता, अनार, दूध, दही, लस्सी और छाछ यदि आप व्रत में खा सकें तो, और नारियल पानी और नींबू पानी सेंधा नमक के साथ, वो कह रही हैं। और साथ में एक संतुलित मेन्यू उन्होंने बना के भेजा है भाई, सुबह थोड़े से भीगे बादाम और दूध केला ले लें, दोपहर में सामक की खिचड़ी, और शाम को अगर आपका मन करे तो थोड़ी सी आलू की सब्जी और कुट्टू की रोटी खा सकते हैं। तो बड़ा संतुलित सा उन्होंने बना के भेजा है भाई। इतने सारे व्यंजन, कल्पना तुम क्या खाने वाली हो?
0: मैं भी यही खाती हूँ। मैं एक्चुअली, मुझे भी आलू थोड़े से पसंद है तो मैं आलू खाती हूँ।
1: लेकिन हमारे श्रोताओं को तो गीत पसंद है,
0: श्रोताओं के गीत सुनाएंगे, लेकिन अब गीत सुनाने का आज हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि भाई बरसात का मौसम का आपको आनंद भी लेना है
1: जी।
0: गीत संगीत तो हमने सुनाया ही, लेकिन थोड़ी सी आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। जैसे हम व्रत के उपवास के व्यंजनों की बात कर रहे थे, तो मैं तो पता क्या करती हूँ, मैं तो मखाने और मूंगफली भी भून के रख लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा नमक डालती हूँ सेंधा, और उसके बाद चाय के साथ उसका भी आनंद लेती हूँ। और कई बार जो आलू होते हैं ना, उनको पतला पतला काट के तवे पर,
1: आलू से हम बाहर निकलते हैं थोड़ा सा फलों की ओर आते हैं, है ना। और समय हो गया है दोस्तों से विदा लेने का, कल्पना।
0: बिल्कुल, तो आप अपना ध्यान रखिए श्रोताओं, और इसी जानकारी के साथ मुझे यानी कि आपकी रेडियो सखी कल्पना को
1: और रश्मि कुकरेती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: आंगन के अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर गतिरोध के कारण आज बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। श्री राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी और हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। लोकसभा अध्यक्ष ने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर किए जा रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की और सदन की कार्यवाही जारी रखने का आग्रह किया, लेकिन गतिरोध जारी रहने पर सदन को पहले 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
1: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखा भाई रबारी और मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। कर्नाटक में आज शाम लोकभवन में 20 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। डीके शिवकुमार ने 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके अलावा 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। आज 20 मंत्रियों के शामिल होने पर मंत्रिमंडल की अधिकतम क्षमता 34 हो जाएगी। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में समीर राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। संसद के दोनों सदनों ने भी आज राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में उत्कल मणि पंडित गोप बंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। गोप बंधु दास ओडिशा के एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ओडिया दैनिक द समाज की भी स्थापना की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप, कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वैसे ऑफिस के लिए जब मैं घर से बाहर निकली तो मुझे बहुत तेज़ जुकाम था, खांसी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन जब मन ही मन में सोच रही थी कि आज गाने किसके सुनने वाली हूँ, तो यकीन मानिए मैं भूल गई कि मेरा गला भी ख़राब है। हाँ जी हाँ, आज कलाकार बेमिसाल में बातें एक ऐसे संगीतकार की जिनका जो संगीत है वो हमें ले जाता है एक अलग ही दुनिया में, जिनकी बनाई धुने उनकी सोच की तरह सूफियाना है। आज भी सुनते हैं तो बस खो ही जाते हैं जैसे मैं खो गई। वैसे एक बात बताऊं आपको, इनकी एक बहुत बड़ी पहचान ये है कि इन्हें 3 बार नेशनल अवार्ड भी मिला है। गाना सुनिए, पहचानिए।

लता मंगेशकर की आवाज में प्रेम पर्वत फिल्म का ये गाना आपने सुन लिया है बिल्कुल अभी, संगीत जयदेव का। और कोई भी भटक जाए अपने रास्ते से, अपनी मंजिल से इस गाने को सुनने के बाद, खो जाए बस इसके संगीत में और गीतों के बोल में। वैसे दोस्तों, अक्सर हमें मशवरा दिया जाता है कि भटकना नहीं चाहिए, सही रास्ता चुनो जो सीधा मंजिल की तरफ जाए, लेकिन जयदेव ने इसके उलट अलगाव और भटकाव को चुना। सारी उम्र सूफियों की तरह गुजारा किया, नई नई चीजें सीखी और कभी रुके नहीं। जयदेव का जन्म नैरोबी केनिया में हुआ था, जहां उनके पिता का बिजनेस हुआ करता था। 3 अगस्त 1919 को उनका जन्म हुआ, यानी कि आज ही के दिन। थोड़े बड़े हुए तो लुधियाना आकर बस गए। फिल्मों से लगाव ने उनकी मंजिल पहले ही तय कर दी थी, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो रास्ते चुने वो बहुत ज्यादा मुश्किल थे।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में लैला मजनू फिल्म का ये गाना आपने सुना बिल्कुल अभी। और कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस गाने को सुनने के बाद, उन्हें लगता है कि ये जो गाना है ये मदन मोहन ने कंपोज किया है क्योंकि क्रेडिट उन्हीं को दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लैला मजनू फिल्म के जो दो गाने हैं वो जयदेव ने कंपोज किए थे, जिनमें से एक गाना ये है। मदन मोहन इस एल्बम पर काम कर रहे थे लेकिन इसी बीच बीमारी की वजह से वो चल बसे और इस फिल्म के जो बाकी गीत हैं उनको कंपोज करने की जो जिम्मेदारी है वो जयदेव को दी गई, जिनमें से एक गाना ये था जो मैंने बिल्कुल अभी आपको सुनाया। और भी ढेर सारी बातें होंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है, यहीं जमे रहिए।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए

0: रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर,
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में एक बार फिर से आप सभी का

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ है आप, कलाकार बेमिसाल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, बातें हो रही हैं म्यूजिक डायरेक्टर जयदेव की। दोस्तों, एक साक्षात्कार में खुद जयदेव अपनी कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि बहुत देखी जिंदगी, न कोई शिकवा न शिकायत, मस्त मौला रहा हूं, जो मिला खाया पिया और जिया। आगे जयदेव कहते हैं कि तमन्नाओं पर न्योछावर हो जाने की उनकी दास्तां रही है। वो छठी में थे जब फिल्म देखी थी अली बाबा 40 चोर। इसमें मिस कज्जन यानी कि जहां आरा ने एक गीत गाया था, खुल जा सिमसिम। ये गाना जयदेव को इतना भाया कि उन्होंने मुंबई की राह पकड़ ली। उम्र बहुत ही कम थी उस वक्त। परिवार उन्हें फिर से लुधियाना ले आया। वापस आकर उन्हें संगीत की शिक्षा लेने के लिए एकेडमी ज्वाइन करवाई गई। यहीं पर जयदेव की मुलाकात स्टंट फिल्मों की एक्ट्रेस एमलीन से हुई। एमलीन ने ही जयदेव को मिलवाया था एक बड़े प्रोडक्शन हाउस से, जहां से जयदेव ने एक एक्टर के तौर पर काम करना शुरू किया था। जी हाँ, जी हाँ, आप चौंक गए होंगे, एक्टर के तौर पर ही उन्होंने काम किया था सबसे पहले। आगे की कहानी सुनाऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले रेडियो के पास पहुंच जाओ बस, लता मंगेशकर की आवाज में एक और बहुत ही प्यारा सा गाना।

वाकई इन गानों का कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। दोस्तों, लता मंगेशकर की आवाज में आपने तुम्हारे लिए फिल्म का एक गाना सुना जिसे कंपोज किया है जयदेव ने, और जयदेव की बातें हम कर रहे हैं कैसे उनका करियर आगे बढ़ा। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं दोस्तों कि जयदेव ने अपने फिल्मी करियर की जो शुरुआत है एक बाल कलाकार के तौर पर की थी। उनकी पहली फिल्म थी वामन अवतार, जिसमें नारद मुनि का रोल किया था जयदेव ने। लेकिन जयदेव यहीं पर नहीं रुके, चार फिल्में की, फिर लौट आए अपने पंजाब। यहां आकर घर के हालात देखे तो ट्यूशन पढ़ाने लगे, मन फिर से उचटने लगा तो फिर पंडित उदयशंकर और इसके बाद लखनऊ के उस्ताद अली अकबर खान से शास्त्रीय संगीत सीखने लगे। उस्ताद अली अकबर खान जयदेव के करियर को एक अलग मुकाम पर ले गए। उन्होंने जयदेव की मुलाकात एस डी बर्मन साहब से करवाई। जयदेव ने कुछ वक्त अली साहब के साथ काम किया असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर। इसके बाद जुड़ गए एस जी वर्मन साहब के साथ, और इस दौरान एक बात पक्की हो चुकी थी कि जयदेव को इस बात का एहसास हो गया था कि मुझे बस अब म्यूजिक डायरेक्टर ही बनना है। चलिए एक गाना मैं आपको सुनाती हूँ एक ऐसी फिल्म से जिसका संगीत पूरी तरह से जयदेव ने तैयार नहीं किया है, लेकिन इस संगीत में उनका जो योगदान है वो है, पूरा नहीं है लेकिन है। पहले गाना सुनो, फिर बताती हूँ आपको कि क्या वजह है जो मैं ऐसा कह रही हूँ।

जी बिल्कुल, बात है इस गाने में और बहुत बड़ी बात है। और बात कुछ इस तरह से है कि गाना तो ये गाया है किशोर दा ने, इसका संगीत दिया है एसडी बर्मन साहब ने, लेकिन दो और लोग हैं जिनका योगदान रहा है इस गाने के संगीत को तैयार करने में, और वो दो लोग हैं, एक है आरडी बर्मन साहब और एक है जयदेव। जी हाँ, जयदेव ने एसडी बर्मन साहब के असिस्टेंट के तौर पर कई फिल्मों में काम किया। कहते हैं कि एसडी बर्मन साहब जयदेव की जो संगीत के प्रति लगन और समर्पण था उससे बहुत ज्यादा प्रभावित रहे। एसडी बर्मन अक्सर कहा करते कि मेरे दो बेटे हैं, बड़ा बेटा जयदेव और छोटा पंचम। जयदेव ने उनसे बहुत सीखा और ये जो एक्सपीरियंस है ये जयदेव के हमेशा काम आया। जयदेव की जो व्यक्तिगत पहचान है, हालांकि वो बनी नवकेतन की जो फिल्म है हम दोनों से। मुझे पता है इस फिल्म का नाम लेते ही दिमाग में घंटियां बजना शुरू हो गई होंगी, है ना? जी बिल्कुल, है ही ऐसी बात। इसके सारे गाने यादगार और सदाबहार थे। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, एक भजन है बहुत ही मशहूर इस फिल्म का, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, और इसको तो बिल्कुल अमरी बना दिया जयदेव के संगीत ने। लता जी ने जितने भी स्टेज शो किए उस जमाने में इस भजन की जो फरमाइश है वो जरूर हुआ करती थी। और एक वो गाना जो आप अभी दिल ही दिल में गुनगुना रहे हैं, उस गाने ने तो बिछड़ने को इतना रोमानी बना दिया कि बस जैसे दिल से निकली हुई आवाज हो। हाँ हाँ, सुना रही हूँ, ठहरो जरा।

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 अगस्त महीने की 3 तारीख व दिन है सोमवार। अब से लेकर रात 9:16 तक हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे कार्यक्रम निष्पादक श्रीमती संगे सुमू, मोनपा मधुघोषक श्री संगे टाशी, तकनीकी अभियंता श्री हेमंत स्वर्गियारी और शिखा डेका, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री न्यूटन बोरा और अच्युत वर्मन और स्टूडियो में उपस्थित अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका टाशी छुटन। आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आपसे थोड़ी देर में यानी दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत 30 स्थान पर। अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की बातचीत संभावित। और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखाभाई रबारी और मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है। प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं, जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद चनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बहीखातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया।
2: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के पैरा एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
2: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
1: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
0: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने एक साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
2: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे।

0: ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटका में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा जीएस पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन

0: आप हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारिकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्के से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कू कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्योहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत 3रे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांतिवार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना भक्ति संगीत के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे चंद हिंदी भक्ति गीत। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चंद हिंदी भक्ति गीत। इसी के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं पर समाप्त हुआ। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बज चुके हैं। श्रोताओं, में प्रस्तुत है विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे केंगलिंग केंगलिंग जोशम लोंगपी कोचम लोंगरी लिसा मोसंग और मुंगतंग मोसंग की आवाज में चंद तांगसा आधुनिक गीत।

0: Shrutang Abhyab, Sunrithi Kingling Kinglang Joshim Longpi, Kochung Longri, Lisa Mosang or Mungtang Mosang Kiyawas Michand, Tangsa Adunik Geet, Isikisat Achka, Vibhinna Branki Geetoka Karikram Pradeshik Sangeet Hipper Samapt Hua. Ye Akashwani Ka Tawang Kendra Hai, Samay Dopahar Ki 3:30 Minute Hue Hain. Shrutang Abhrastut Hai Karikram Meri Baat. इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवंग की 8वीं कक्षा की छात्रा कुमारी देवी प्रधान से बुनाई और हस्तशिल्प की कला विषय पर चंद शब्द।
1: तरस जाते हैं रंग जब हाथों से कला निखरती है, मिट्टी और धागे से रूहानियत ठहरती है। नजाकत, सलीका और मेहनत का अद्भुत संगम हस्तशिल्प की हर कृति सलीके से सवारती है। आकाशवाणी तावांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूँ देवी प्रधान, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तावांग 8वीं की छात्रा। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय बुनाई और हस्तशिल्प की कला है। हस्तशिल्प मनुष्य की रचनात्मकता और कल्पना का एक ऐसा अद्भुत मिश्रण है जो किसी मशीन की मोहताज नहीं होती। यह हाथ से बुनाई गई वस्तुओं की कला है जो सदियों से हमारी संस्कृति, सभ्यता और दैनिक जीवन का अभिन्न अंग रही है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में हस्तशिल्प न केवल

0: कलात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन भी है। हस्तशिल्प के अंतर्गत मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की नक्काशी, आभूषण और खास तौर पर बुनाई जैसी विधाएं आती है। बुनाई केवल धागों को जोड़ने की कला नहीं है, बल्कि यह प्यार, धैर्य और परंपरा को एक धागे में फिरोने का अनुभव है। भारत प्राचीन काल से ही कला और शिल्प की भूमि रहा है। यहाँ की बुनाई और हस्तशिल्प की कला विश्व प्रसिद्ध है। ये कलाएं न केवल हमारी संस्कृति की पहचान है, बल्कि लाखों लोगों की आजीविका का साधन भी है। हस्तशिल्प की कला में मिट्टी, लकड़ी, धातु, कपड़ा और पत्थर जैसे वस्तुएं से सुंदर और उपयोग चीजें बनाई जाती है। मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की नक्काशी, धातु की मूर्तियां और कढ़ाई वाले वस्त्र इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यह वस्तुएं हाथों से बुनाई जाती है, इसलिए इनमें कारीगर की मेहनत और भावना झलकती है। हस्तशिल्प का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के शिल्प प्रसिद्ध है। वस्त्र और बुनाई जैसे कश्मीर के ऊनी शॉल, पंजाब की फुलकारी और हाथ से बुने गए स्वेटर, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी को मनचाहा आकार देकर कलात्मक रूप देना, लकड़ी का काम, नक्काशीदार फर्नीचर और खिलौने, लोक चित्र जैसे मधुबनी पेंटिंग, वारली पेंटिंग जो दीवारों और कपड़ों पर की जाती है, बुनाई चाहे वह सिलाई से हो या क्रोशिया से, हाथों की एक अत्यंत सूक्ष्म कला है। जब धागे को सिलाई की मदद से लूप दर लूप फंसा कर धागा स्वेटर, शॉल, टोपी या मोजे का रूप ले लेता है, बुनाई की कला पीढ़ियों से चली आ रही है। दादी नानी के हाथ से बुने स्वेटर की गर्मी और भावनाएं बाजार में खरीदे गए स्वेटर में नहीं मिल सकती। बुनाई की कला में सूत, ऊन या रेशम से कपड़ा तैयार किया जाता है। यह कार्य हाथ से करके या छोटे उपकरणों की सहायता से किया जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार की बुनाई देखने को मिलती है, जैसे बनारसी साड़ी, कांचीपुरम साड़ी और पश्मीना शॉल। प्रत्येक क्षेत्र की बुनाई इसकी संस्कृति और परंपरा को दर्शाती है। हस्तशिल्प और बुनाई केवल एक शौक नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए आजीविका का साधन है। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं के लिए यह सशक्तिकरण का सबसे उत्तम साधन है। आज के आधुनिक युग में मशीनी के कारण इस कलाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी सरकार और समाज के सहयोग से इन पारंपरिक कलाओं को सुरक्षित किया जा रहा है। हमें भी देश की इन अमूल्य धरोहरों को अपनाना और बढ़ावा देना चाहिए। धागों की बुनावट में छिपे है दिल के अरमान, हाथों की कलाकारी से सजती है अपनी पहचान, हर घाट में बसी है मेहनत और सलीका, हस्तशिल्प है भारतीय संस्कृति का मान। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवंग की आठवीं कक्षा की छात्रा कुमारी देवी प्रधान से बुनाई और हस्तशिल्प की कला विषय पर चंद शब्द। इसके साथ आज का कार्यक्रम मेरी बात यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:35 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे देव नेगी की आवाज में फिल्म केदारनाथ से। शब्द रचना है अमिताभ भट्टाचार्य के, वह संगीत है अमित त्रिवेदी का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म आई हेट लव स्टोरी से गीत श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा की आवाज में गीत कार्तिक कुमार व संगीता विशाल शेखर का। आप सुन रहे कार्यक्रम नारी संगीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे इरशाद कामिल द्वारा शतपथ फिल्म टाइगर जिंदा है से। ज्योति नूरन की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा है विशाल और शेखर ने।

फिल्म टाइगर जिंदा है के संगीत के साथ कार्यक्रम नारी संगीत यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को

0: बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, में प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म गजनी से बेनी गैल और श्रेय घोषाल की आवाज में। शब्द रचना है प्रसून जोशी की व संगीत ए आर रहमान का।

अभी आपने सुना फिल्म खट्टा मीठा से गीत के और सुमिति चौहान की आवाज में शब्द रचना इरशाद कामिल के वसंगीत है प्रीतम का। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म सीनियर किंग्स से। शब्द रचना है मयूर पुरी के वसंगीत है प्रीतम का।

अभी आपने सुना आयुष्मान खुराना की आवाज में फिल्म विकी डोनर से गीत, गीतकार थे आयुष्मान खुराना व संगीता रोचक कोहली और आयुष्मान खुराना का। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म बागी सरमान मलिक और श्रद्धा कपूर की आवाज में। शब्द रचना है संजीव चतुर्वेदी की व संगीत है अमाल मलिक का।

अभी आपने सुना फिल्म लुटेरा से गीत मोनाली ठाकुर की आवाज में गीतकार थे अमिताभ बच्चन और संगीत था अमित त्रिवेदी का। कार्यक्रम आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे आतिफ असलम की आवाज में फिल्म लव यात्री से। शब्द रचनाएं अमिताभ भट्टाचार्य के व संगीत है अमित त्रिवेदी का।

अभी आपने सुना फिल्म जब वी मेट से गीत श्रेया घोषाल की आवाज में गीत करते अमिताभ भट्टाचार्य और संगीता अमित त्रिवेदी का। इस गीत के साथ आज का कार्यक्रम गीत मंजरी यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे अली अकबर खान से सरोद वादन। राग है मंच खमाज। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत अली अकबर खान से सरोद वादन। ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 4:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार व 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड ने सुश्री जनवरी ताले और सुश्री हाचू लोम्बो को लद्दाख के जांस्कर क्षेत्र में 7077 मीटर ऊंचे माउंट कुन शिखर को सफलतापूर्वक फतह करने पर बधाई दी। सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुरुंकुमे जिले के होरी क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़क संपर्क व्यवस्था को सफलतापूर्वक बहाल किया। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने भी अरुणाचल प्रदेश के लगभग हर जिले के लिए येलो, 6 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज और पापुमपारे जिले के लिए अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांति वार्ता की संभावना। और 2030 अहमदाबाद राष्ट्रमंडल खेलों की आधिकारिक उल्टी गिनती शुरू। कल रात ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन के साथ भारत को खेलों का बैटन औपचारिक रूप से सौंपा गया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई, जिसमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। बार बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही जब दोपहर 12 बजे प्रारंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टैटनी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने पर लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।

0: पक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है। अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। किस तरह ये प्लकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
1: उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत के पैरा एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
2: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
1: अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड ने सुश्री जनवरी ताली और सुश्री हाचू लोम्बो को लद्दाख के जांस्कर क्षेत्र में 7,077 मीटर ऊंचे माउंट कुन शिखर को सफलतापूर्वक फतह करने पर बधाई दी। राज्यपाल ने उनकी इस उपलब्धि को राज्य के लिए अत्यंत गौरव का क्षण बताते हुए कहा है कि दोनों पर्वतारोहणियों ने अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही बनकर इस चुनौतीपूर्ण शिखर पर विजय प्राप्त कर इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि माउंट कुन भारत के सबसे कठिन उच्च हिमालयी पर्वतारोहण स्थलों में से एक है, जहां बर्फ से ढकी खड़ी ढलाने, खतरनाक हिमनद, पतली हवा और अप्रत्याशित मौसम जैसी कठिन परिस्थितियां पर्वतारोहियों की कड़ी परीक्षा लेती है। राज्यपाल ने कहा है कि यह सफलता असाधारण साहस, दृढ़ संकल्प, सहनशीलता और मानसिक दृढ़ता का परिचायक है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुरुंकुमे जिले के खुरी क्षेत्र के महत्वपूर्ण सड़क संपर्क व्यवस्था को सफलतापूर्वक बहाल कर दिया गया है। इसके लिए संगठन ने 200 फीट लंबा बैली ब्रिज स्थापित किया, जहां गत 11 जुलाई 2026 की रात आई अचानक बाढ़ में वहां का मौजूदा पुल बह गया था, जिसके कारण पूरा क्षेत्र अन्य स्थानों से कट गया, जिससे लोगों की आवाजाही, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तथा आपातकालीन सेवाएं बाधित हुई। संपर्क बहाली का कार्य प्रोजेक्ट अरुणाक द्वारा मिशन मोड के अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच किया गया। 85 RCC और 756 BRTF की BRO टीमों ने लगातार हो रही भारी वर्षा, तेज नदी प्रवाह और अस्थिर मिट्टी जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना किया, जिससे पुल की नींव और पहुंच मार्ग के निर्माण में कठिनाई आई। इस बीच होरी के निवासियों ने संपर्क बहाल होने पर BRO के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये संपर्क उनके आजीविका और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। अगले 2 दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माही, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों अपर सुबनसिरी, शियोमी और अपर सियांग को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए येलो, साथ ही 6 जिलों ईस्ट कामेंग, कुरुंकुमे, रेपारादा, ईस्ट सियांग, लोहित और लोंगडिंग के लिए ऑरेंज, साथ ही पापुमपारे जिले के लिए भी अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्षों के भीतर आधार सत्यापन अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया है कि पिछले 12 वर्षों में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मनाने की अपील की है।
3: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो

0: आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थताओं के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की है कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया है कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण उन्होंने उसे बड़े हमले से रोक दिया है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पों के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनती दिख रही है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर है। वे आज नई दिल्ली में AFHQ कही। उन्होंने कहा है कि यह एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने क्योंकि सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर है। वे आज नई दिल्ली में FHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा है कि यह एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र की निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
2: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
1: 2030 अहमदाबाद राष्ट्रमंडल खेलों की आधिकारिक उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल रात ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में समापन के साथ भारत को खेलों का बैटन औपचारिक रूप से सौंप दिया गया। समापन समारोह के दौरान भारत ने अहमदाबाद के लिए विश्व को एक आर्थिक सांस्कृतिक आमंत्रण प्रस्तुत किया है, जिसमें प्राचीन भारतीय दर्शन, समकालीन कलात्मक अभिव्यक्ति और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का सुंदर समन्वय देखने को मिला। इस प्रस्तुति के साथ वर्ष 2030 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के शताब्दी संस्करण की आधिकारिक यात्रा का शुभारंभ हुआ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: President Draupadi Murmu will begin a three-day visit to Odisha today. During her visit, the President will participate in a series of educational, cultural and official engagements in Cuttack, Bhubaneswar, Brahmapur and Taptapani in Ganjam district. The President is scheduled to inaugurate Jagat Guru Kripalu University at Cuttack today. Tomorrow she'll travel to southern Odisha to offer prayers at the Ma Kanduni Devi temple near Taptapani before attending other official programs. Counting of votes for the by-elections to three assembly election constituencies is underway. In Bihar's Bankipur Assembly constituency, Jan Suraj Party candidate Prashant Kishore is leading by over 8,000 votes. In Gujarat's Manjalpur Assembly constituency, BJP candidate Satendra Bhai is leading. In Madhya Pradesh's Datia Assembly constituency, Congress Party candidate Ghanshyam Singh is leading. Polling for these three assembly constituencies were held on the 30th of last month. In Bihar, the by-election for the Bangipur seat was necessitated after BJP President Nitin Navin vacated the assembly seat following his election to Rajya Sabha. A Delhi court today acquitted former Wrestling Federation of India chief Brij Bhushan Sharan Singh and co-accused Vinod Tomar in a sexual harassment case filed by women wrestlers. Additional Chief Judicial Magistrate Ashwini Panwar acquitted ex-BJP MP Singh and Tomar, former WFI Assistant Secretary in the case. The court had on July 2nd reserved the order for today after completion of the final arguments in the case lodged by six women wrestlers. In May 2024, a court had ordered the framing of a charge of criminal intimidation against Singh. It had, however, discharged him in a complaint filed

0: लन्च गरौँ अरे त प्रधानमन्त्री टिबी मुक्त भारत अभियानका निक्षय मित्र यिनी टिबी नमलाङ मत छै गोसम अरे त इच सिन यिन त टिबी नेटसँग नासे रासिन बिगोसु निय मात गस त मिनाङ इच लन्च यास गत ओका दि निम क्यो मिना तपचे काङे तेस ग मन्सिन त मार मेनल्यान्ड इन्डिया जिका मिक्याम तो योर नो मेरो ता इजिक सिबि जो निचे शाम ले जिक तब जे देश दक्ष ये सगुस में ता इजिक सि उत पेतांग एडिशनल न्यूट्रिशनल सपोर्ट निगा उत निक्षे मित्र देखो लिंक या है इजिक राशन बिदम ता लेरे लेरे गोरको तो मिना होनरेबल पेतांग ससुरान कंस्टिट्यूएंसी वाइस या पेतांग पेशेंट नाशे राशन पेतांग तो ये कन उन में दे विल कंसर्न लोंगो सुमे इदोयो मदोयो ने ओरे दे दोय ने ओने ने इजिक मिना आसो कंस्टिट्यूएंसी वाइस या है होनरेबल सुमकासी राशन बिदम ताई इट रशियन निंचे लेरे लेरे बीतम था इचुरे ताई इचे देपशेर सुम दाल शेर ठीक दिन पेशा थी तेल पाव थी होमा पाउडर बाजी केजी थी अंडर ट्रे थी बीतम
1: ये तो मंदे था उड़े
0: ये
1: ताचा दोकन रे मनक
0: बाकी दो मन बाकी दे दो दोकन ने ताई तुम आपको 19 पेशेंट नो चिक निंको पिदु दो दो ची मगो नहीं है मदद इजिक दाते दिन पे चेंगर को 9 सितंबर 2022 का प्रोग्राम से लॉन्च आया इजिक सुर उंगर नटपा राशन दोय पंगन मिखे सुमने
1: राशन जीते पितांग गाना जीते रंजे सुमकासे पितांग शो नानो
0: ता खर्चा ता शुंग मनु ता उस पितांग शो
1: इजिक बेले रंजे सुमते
0: इजिक ता इज राशन जो गए बिरिंग इन नगरी ओमा दुकान देशी शत निया इजिक पेशन बिना दोय क्या करना शे कंसुएंस वाइस या ओंग बिले ता इच राशन चु गोक स्टॉप ना गई लॉन्ग रोड इच राशन चु गोक स्टॉप ना ओमो बिदुम ता बी ए इट पर छे इच गोर को टीवी को ओमा मार ग्रुप नु मे व्हाट्सएप ग्रुप ता इच गरे राशन केश बी ना इट पर छे इच इच ग्रुप का थंग ओसो ग्रुप का अंगा था ओसो तोंग मेडिकल ग्रुप का इनो उसका इंगरे ए थोंग ता उस बिल छे तंगर क्वार्टरली या हाफ ईयरली इच ससरा कंस्टिट्यूएंस वाइज का सरना शेंगरे इच बिल छे पुई
1: सोलेस इजे पोदमना शुमशोके रोरम निमे रेमना रोरमना नाके ने फनमे ओरे ना क्या लेगनो छि फरिया ता रूप तोटा ते जोन इचमना राशन ने नि दानिंग दा लोनि तो खन लेगाय मे ओरे ता ना तो 2025 ले छि गता क्या गे गप छि उने गा टीवी छि चंग दा मुनु छि युक गता शुंकु छि ने मे ओरे शुंग मिगुल ने मे इजे पोदा उच्च कु 2025 ले छि गता क्या गे गप छि उने कु ता टीवी मुनु छि छि को मे ना ओरे ता उस्ते ता छ गया मार्केट ता ते कसे पेबु निंग मार्केट गाइडलाइन
0: तंगादंगो उच्च अता प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से ना 2018 का टीवी 2025 ले मनु चेक निये वाय नंगम बोले इति हिम शिंतरे ता कोविड होंग इचिकता में सुम प्लीटी जे मनु या वाय शिंगे मी ओंसो टीवी आउट प्रोग्राम चिचला या में मतों को दी रहे में वाले इचिक सी दा 2025 का लास्ट टाइम पर ता उत नेट सो मनु चेक निये को लेता को दुनो उत प्रोग्राम ची दुनो रंग उस लागू नम ताशिन ते उत एलिमिनेट ते यक मते हिम शिन तरे उत वे याई न्यू चिके टीवी नेट ची ना तो योर न्यू मेरे ता उसको वजह से ना तो टीवी नेट योर न्यू शो चीन
1: नस
0: टीवी नेट शंकर ना होंगे ना हर चिकअप याद मेरे
1: ला
0: हर चिकअप ची नालिंग हर थी पॉय रोट कोसम इस ओमा ओंग ये थी पॉय गरी टीवी नेट नोक चन ये दिन हाफ तो नहीं ले माशो सिट या सुकना शे गरी ना ता हर चिचक भी आदम था इचक भी आये इचे फ्री नंबर रहला इचे लॉपर चेक को सु खादू नंबर था देखा गरी उच्च हर चिचक भी आये उम्ते लाने ने नत पे नंगे ने देखा हर चीज दिव्य फॉय मरो तू उम्ते लानो दिव्य फॉय तंगे रो तू लाने ने नेच नी ये गमिशी मरे तो लॉपर चेक को सु इंच मिंच खादू थी नी इच्छे दम इचे को दोनों सिम्टोमेटिक उम्ते नो ने शा ब्लड शुगर चिंगरी दिए दम था ब्लड शुगर चीते को सुंची में रानी क्योंकि ते भी उमती भी नेच नौ यंगरे ब्लड शुगर ची चेक मायो को उमते लानौ ने ना बिग नेच अब यु में डायबिटीज ची नौ ने ना जो मानचे डायबिटीज को मानचे भी इच लोपर ची छे टीबी नौ ने टीबी इत मानचे नहीं देखा भी नेच तो सो फन लंच रही में इच को डायबिटीज थी इमो इच एच आई वी टेस्ट याद होता उस कंपल्सरी ता एच आई वी ए नौ उमते लाने इत गरी टेस्ट मायो टीबी नेच नौ ने गरी टीबी नेच मंच भी थों ने जे बेमा पेंगे मरे इज देव से दा डायबिटीज ने एच आई वी टेस्ट जे देखो रहा है यादम
1: ग्राम पंचायत पाचे तगा दा टीबी मुनु ने ता इच पंचायत सगुंग बाचे जे एता ते थुलक दिनो बा
0: टीबी मुक पंचायत जे डिक्लेयर याय गो गार ना थारंग बोर्ड मेंबर दिचो गोस मे चेयरपर्सन जि ग ता टीएम एम इज इज देव चे ग ता गाचे गाचे डिक्लेयर याय नम टीबी मन ने इच काच ग्राम पंचायत जे विलेज जे टीबी मन ने डिक्लेयर इज डॉक्टर बास क्रीरत इच एज ए बोर्ड टीचर इच थी वेरिफिकेशन यादम एच ए दोनों गांग डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर तंजिन जमला बी एच क्रीरत इच गरबाना उस वेरीफाई या इच को इच वेरीफाई या लिस्ट चीचे

0: 이제 우리 district 판차트라스 오피서샤 우리 푸드메 우리 다 우두 모토디 다라 DB 목트 미니 DB 프리 빌리스 정도 니 베셰 오미야 서브미디아 이제 나르바나 데 플랑디 주에 베리파이 하담다 다 우디 서포징 본링 오토디 움디 노니나 오목 테스트 지고 해야듬 다 6 키 포인트 인디케이터스 니 우티고 수 카드 나타임다 제세 본링 오토디 싱어리 DB 몬니 움셰투 니나 eligible ni tibi muk panchayat ka eligible ni nge na 6 key point indicators chi te dum da sa omo population go no nam ujik 3% of the population mi takshi bi ha saru go su me tibi net no nam nam sputum sample ro te angar takshi bi ha ko su ta ijik ning che de tibi net monu ne ne to krug me re shin da tibi net no ne ne ti kla go de monum da omo ta declare ko tibi si ne su mi ti kla she declare mo chu me tibi mukt panchayat ni utte ji chi data om nam nga 3% of the population tanga examine ya ko su ni me re net chi tibi notification yo chi is a net chi shon no ni ti kla she eligible monum ta ji ti ji nikshe portion yo sang ni chu rup chi bid me re ta suppose om nat pi ti no mo to la ni ne beshe lithic group ji bisu no na munu na ta lithic group ji beshe ngoto ti bisu no ni ne shukpa bik lere lere chi ti bhi grai me re is ngoto ti ngar 100% county ya ya it eligible no ta ichi pradhan mantri tv muk bharat abhiyan ka rashin thapu na mata pon ichi ngoto 100% ngoto ti gosam ta ichi te na pa tamit ka it nya jese yuthi ka tv net no ne na treatment outcome success rate chi 85% ngoto ti ये गोसुरेम द नपुतमेत का 2023 का मी नै नोने सुम नोने ना इच ओय नोने ने बिरकुम मंजरिम रो या थरे इच फनु गुसमे द इच टेदम इच को ताउ थी जेसे ग्लो का गोंजों उमदि नो टीबी नोने ना बिग उस टेसे खोजम द उजों हरि उस मन ना कबलीती इच टेप्लेटी ने मन ना कबलीती विदुम रे द इच की फनकु नोने मन बेखारजी ओम टेसे मन नथा रंग मुरगो जो थी टूनेट मशीन योजी इच tese aminum ta itese man main man di tv ga reform sin ni dinum eje resistant utman je phanku nowa munwa istemach murgo so tiswa itisu ne na ta ut point groji also kru no ne na chunga tv muk panchayat ni declare nining 29 villages ko tv free declare kiya ich nining 15 2023 ka tv net man ye ore ta na ta usya khanasha सर्टिफिकेट थी बिदम टीबी फ्री ने इचको महात्मा गांधी को ब्रांच कलर स्टेच्यू थी पेटा हम यार स्टेट का थों दोरे तब नदा नदा यो ने 23 गंगरी यूजी लाशे इच बिस्मे त इट यूजी लाशे तराई दे टीबी ने थे रमनु उंदे नो ने ना तरा दे महात्मा गांधी के स्टेच्यू जी सिल्वर कलर सिल्वर कलर थी या सर्टिफिकेट या इज द उस डे सिल्वर कलर दरा बी एट द मेन डे तमसुम गई बोले 25 को दे टीबी नेच मुनु उमते लानो ने दे इज गोल्ड कलर इज स्टैच्यू बी यू
1: स्टैच्यू इन द को कुड ने रे कने जे कु ले सो द दे शो सो लेरिम ट्रेडन लब्जी का डॉक्टर उड़के लमो डिस्ट्रिक्टिव क्लोसेस ऑफिसर दे शो सो फेस शो ये तगा तगा डिस्ट्रिक्ट ने गाता टीबी शंगन जे खटम गो नो नम मन सदो जे गो नो नम इज मन कोर्स बिन लिविन कोर्स को सो ही नम इज को ता मन सदो बिन गया ही नम इज ता उ नि सोयुक जे बिन गया रे नो ही नम इज को ता ओ सो से गा जो डॉक्टर उड़के लमो से दे नम बी इज बो ता टीबी शंगन नाइन ने ता मिनो पेशेंट बिन ती शे बत मियो या जे गा ता केमसा ने को गा ता मिनाई ने पेशेला रो या को सो नि ने जे ते तन न या को सो खा तो नि मो रे ते रंग ये सोन या ने दन ची मन दे रशिया बोदो खप नो मु इजे नो बिस त रंग ये सोन या इजे मिना दा मन दो तो ना ते बे ता मनो मेडिकल स्टाफ ने बे ता खम से तन तन या बिना रे जे सु जे मिना सा दे ओ या दो छन दि ता मना तन तन नो नि दे शो तो दा तवांग लुटिंग गु या से जु रंग ये ना छ मार टीवी ने तो को डॉक्टर ये नो मु से किसिंग के नो बि जु डॉक्टर ना छ थु छिन छु
0: तचला
2: Lengi nangai tata, lerim tretin lapchika kando rozomu district mankang tabang district tuberculosis officer Dr. Uryan Lamatamba TV nasakkor kamera sotisa nambur. Benangshal kendinjukan tabang nuntin lekung kushop digital jimbur. Lengi uttamache tundek lerim tretin lapchisi dos. Uz agishmani tabang imbur. Lengi nanduktik tuse kronik karma neyoni. दादिश्नक्तिक लेरिम सेराजु कोसुतुर लंगेनां उदोना डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी तवंग नेना

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम की 6:10 हुए हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम जरुखा। कार्यक्रम जरुखा में पहले सुने एक जरूरी सूचना। डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी यानी डूडा के ईई कम मेंबर सेक्रेटरी तवंग के कार्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई यू 2.0 के तहत लाभार्थी नेतृत्व निर्माण यानी बीएलसी घटक के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार करने के संबंध में प्रति लाभार्थी सहायता की दर के मौजूदा दर 1,50,000 रुपये से बढ़ाकर 2,50,000 रुपये कर दिया गया है। अतः पीएमएवाईयू 2.0 के शुभारंभ के मद्देनजर तवंग टाउनशिप के सभी इच्छुक आम जनता या लाभार्थियों को यह सूचित किया जाता है कि पीएमएवाई एचएफएयू 2.0 के तहत बीएलसी के लिए नया फॉर्म जारी किया जाएगा और दस्तावेजों का सत्यापन 28 जुलाई 2026 मंगलवार से 11 अगस्त 2026 मंगलवार तक ईई कम मेंबर सेक्रेटरी डूडा तवंग के कार्यालय में सभी आधिकारिक कार्य समय यानी सुबह 10 बजे से शाम 4:30 तक के दौरान किया जाएगा। इसलिए सभी इच्छुक नए आवेदकों यानी लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित दस्तावेजों की जेरोक्स कॉपी साथ लेकर आए। इनमें है तवंग की जिला आयुक्त से भूमि के लिए एलपीसी या एनओसी, तवंग जिला आयुक्त से आए प्रमाण पत्र यानी इनकम टैक्स।

चार बजकर 55 मिनट पर अंग्रेजी में समाचार। मनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम नामथार कल शाम 5 बजे 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मनपा में श्री धुपदन टाशी से 5:35 पर कार्यक्रम दांगपोक समा और शाम 6:20 पर कार्यक्रम छेदन लेरिम जिसमें आप सुन सकेंगे सेरा जे जमयंग चुकरलिंग मठ के उमजे थुपदन वांगचू और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत का शेष भाग। कल शाम 7 बजे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम पोइम ऑफ द डे शाम 7:11 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म साजन से चंद गीत। कल शाम 7:25 पर कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोक 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित प्रादेशिक समाचार 7:50 पर रीजनल न्यूज। कल रात्रि 8 बजे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि के ठीक 9 बजे न्यूज एट 9। तो श्रोताओं ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इन्हीं जानकारी के साथ आज का कार्यक्रम जरखा यही पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे मनपा में।

मिटम वेब किलार चेचिले निकले थी मीटर यादिक निकल चीनीस का उस आकाशवाणी तवांग इमर लंगे नंदु तक सुसे क्रोनिकर्मा खेलोनी दानमिन मतो शेदन लेरिम कोसोतुर देखुत लेरिमा सेराचे चमगर छगुलिंग तसंग उमजे तुतन वाचु सिक्रिसो इदम तुमडिंक दाकंग दांसमिचिकमार मुती असनासा

Yamai, don't you?

Yes, I'm a

Yeah.

0: Om Benzaken.
1: Om Benzaken.

0: bitabul onge do rama razashan oido yoso jubale tuje peme hiroge tuje tuba sagwe rau kudo duga sembo tuba tabo kogo ba chaye ge tanam ja ge kolo namwa chene teba chaye chuse ge shabe
1: Lingin Nagata, Yedon Lerima, Siraje, Jamir, Jamyang Chugling, the Sunk, Umze, Tutan Majusikriso, Yidam, Tumdin Cook, Dakang, Sanamber, Uzuk Marmutia, Langinangai, Nogonup, Suze, Runikarma, Kaliche, Yedon Lerima Sanasa, Langin Utamache, Akishwani, Tawank, Yansinjuso, Tishnoptik, Monpak, Lerimbanang, Chasang Tutur, Langin and Optik Suze, Nisondo, Da Jukulerim, Akishwani, Tilikia, Religioso, Na Hindika Sanguning, Suze Nisnikarma, Langache, Injika, Sanguin Sanasa.
2: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर मुख्य मुकाबला इन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच में था। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट जीत ली है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है।
4: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
2: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। इसका लक्ष्य भुगतान में देरी को दूर करना और विवाद समाधान को सरल बनाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई

0: investment, digital technologies, and manufacturing. Defense Minister Rajnath Singh has stressed the need for greater integration between the military and civilian wings of the Ministry of Defense to strengthen the country's defense ecosystem. Addressing the 85th Armed Forces Headquarters Civilian Services Day celebrations in New Delhi today, Mr. Singh emphasized that this will effectively address evolving security and technological challenges. The situation in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir worsened overnight as protesters refused to disperse and security forces opened fire on demonstrators. Many women and children have remained at the protest site for the past 50 days. People from across POJK have joined the agitation, which is now spreading rapidly across the region. And Iran said today that there were no talks underway with US and no plans for any meetings, contradicting US President Donald Trump, who had said that negotiations with Iran through intermediaries are scheduled to take place today. And that is the end of this news bulletin.
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित अंग्रेजी में समाचार। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तावांग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे कृषि विज्ञान केंद्र तावांग के SMS यानी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट श्री चंद्र कुमार सिंह से वार्ता। वार्ता का विषय है सब्जी की खेती की पैदावार में बढ़ोतरी लाने के लिए वैज्ञानिक तरीके।
2: किसान भाइयों एवं बहनों नमस्कार। किसान भाइयों, आज के चर्चा में हम बताएंगे कि किसान भाई जो सब्जी का खेती किस तरह से करे कि ताकि जो अधिक पैदावार मिल सके। क्योंकि किसान भाई, यहाँ पर मैं तवांग डिस्ट्रिक्ट में देखता हूँ कि खेती तो करते हैं सब्जी का, लेकिन उनको जो है अधिक पैदावार नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनको जो है प्रॉफिट भी अधिक नहीं मिल पाता है। तो इसलिए सबसे पहले जो है सब्जी का खेती करने के लिए आपको जो है खेत का चुनाव करना बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर जो है सब्जी का खेती मुख्यतः जो है बारिश के सीजन में की जाती है। तो खेत का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए कि ऐसे जगह पर चुनाव करें खेत का जहाँ पर जो कि बारिश का पानी न रुकता हो। वहाँ पर जो है अगर बारिश का पानी रुकेगा तो आपका जो सब्जी की जो फसल होती है वो जो सड़ करके नष्ट हो जाएगी। तो खेत का चुनाव ऐसा करना चाहिए जहाँ पर पानी जो है नहीं रुकता हो। उसके बाद जो सॉइल टेस्टिंग, किसान भाइयों जैसा जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सॉइल मृदा परीक्षण के बारे में जो है बहुत जो है जोर दिया है। उन्होंने एक स्कीम शुरू की है सॉइल हेल्थ कार्ड। इसके अंतर्गत मिट्टी की जांच कराई जाती है और उसके आधार पर फसल में क्या क्या खाद चाहिए वो जो है डाला जाता है। तो कोई भी फसल लगाने से पहले किसान भाई को मिट्टी की जांच कराना बहुत जरूरी होती है। तो मिट्टी की जांच कराने से पहले आपको जो सॉइल सैंपल लेना अति आवश्यक है। तो सॉइल सैंपल जो है किस तरह से ले इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपका जो खेत है, खेत के जो है चारों बाउंड्री से करीब जो है 1 मीटर छोड़ करके पूरे खेत से जो है 7-8 जगह से आपको जो सॉइल सैंपल लेना है। और ये ध्यान देना है कि जगह से जो सॉइल सैंपल आप ले जहां पर जो है खरपतवार वगैरह न हो, ना तो गोबर की खाद वहां पर आपने फेंक रखी है। तो जो मैंने बताया कि अभी 6-7 जगह से सॉइल सैंपल लेना है, तो एक जगह से सॉइल सैंपल आप कैसे लेंगे इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है खेत में जो है थोड़ा बहुत घास वगैरह थोड़ा बहुत हो उसको जो हटा दे। हटाने के बाद आप जो है करीब जो है 6 इंच गहरा गड्ढा खोदे और उसके जो है गड्ढे की जो है मिट्टी आप निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। और ऊपर से जो है कट लगाते हुए नीचे 6 इंच तक आप खुरपी की सहायता से जाइए और उसमें जो है मिट्टी जो है गड्ढे में गिर जाएगा। तो उस मिट्टी को जो है आप बाहर निकाल लीजिए। इसी तरह से 7-8 जगह से आप सैंपल ले लीजिए। ये सैंपल लेने के बाद अब जो है पूरा जो है सैंपल को एक जगह मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके आप जो है गोला बना लीजिए। गोला बनाने के बाद उसके आमने सामने का 2 भाग जो है हटा दीजिए। उसके बाद जो है आमने सामने का 2 भाग और आपस में मिक्स कर लीजिए। इस तरह से किसान भाई जब तक आप मिक्स करते जाइए जब तक आपका मिट्टी जो है 200-250 ग्राम ना हो जाए। जब आपका मिट्टी 200-250 ग्राम हो जाता है तो उसको जो है एक पॉलीथीन में जो है आप डाल लीजिए और उस पॉलीथीन में आप जो है अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, गांव का नाम और अपने जो है खेत का पहचान जो है लिख दीजिए। क्योंकि किसान भाई के पास जो है कई खेत होता है कई जगह पर, तो किसान भाइयों को मालूम रहता है कि इस खेत का हमारा क्या पहचान है, दूसरे खेत का क्या पहचान है। इससे जो है आपको जो है रिपोर्ट आएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि मैंने जो इस खेत से मिट्टी दिया हुआ है। तो वो जो है नमूना लेने के बाद आप जो है यहाँ हमारे तवांग डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र जो कि चांगबू विलेज के पास जो पोटैटो सीड फार्म है वहां पर जो है

ऑफिस है, वहां पर मिट्टी की जांच हम लोग करते हैं, वहां पर आप ले आइए। नहीं तो जो है जिला कृषि अधिकारी का जो ऑफिस है डीसी ऑफिस के पास में है, वहां पर आप मिट्टी का नमूना दे दीजिए। तो किसान भाई आपका जो है करीब हफ्ता 10 दिन में आपका मिट्टी जांच होकर के आपको जो है रिपोर्ट मिल जाएगी। और ये मिट्टी का जांच जो है निःशुल्क होता है, मतलब कि किसी प्रकार का आपसे कोई फीस या पैसा जो है नहीं लिया जाता है। तो मिट्टी का जांच कराने के बाद आप जो है जब रिपोर्ट लेने आएंगे तो आप जो है बता दीजिए कि उस खेत में आप कौन सी फसल लगाएंगे, तो उस आधार पर आपको जो है कितना जो है देसी खाद, कितना यूरिया, कितना डीएपी या कितना पोटास और कितना जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको खेत में चाहिए सॉइल हेल्थ कार्ड पर लिख करके आपको दे दिया जाता है। तो उस हिसाब से आप जो है खेत में जो है खाद डालिए। इसके बाद जो है मिट्टी जांच कराने के बाद किसान भाई जब आप खेती करने जा रहे हैं तो उसमें जो सीड का बहुत रोल होता है। इसमें जो है गुड क्वालिटी का सीड चाहिए। गुड क्वालिटी सीड वही होता है कि जिसकी अंकुरण क्षमता अधिक हो और उस जो है बीज में कोई बीमारी ना लगा हो, कोई कीड़ा ना लगा हो और उसमें जो है कोई कंकड़ पत्थर या धूल वगैरह ना हो, वो जो है गुड क्वालिटी का सीड होता है। जहां तक हम देखते हैं किसान भाई अपना बीज ज्यादातर यूज करते हैं तो वो जो है यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी खेत में लगातार उसी बीज को लगाएंगे अपना तो उसमें जो है बीमारी बहुत जो है आती रहती है। इसलिए जो है गुड क्वालिटी का सीड करना चाहिए। तो गुड क्वालिटी का सीड जो है सिलेक्शन करते समय आपको जो है ध्यान देना है कि उसके जो क्या क्या करेक्टर्स होने चाहिए। सबसे पहले उसमें जो फिजिकल प्योरिटी ये होता है कि उसमें कोई भी धूल, कोई भी घास या कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए। तो यानी आपने जो 1 kg सीड लिया है तो उसमें करीब जो है 1-2 ग्राम तो हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा जो है नहीं होना चाहिए, जो फिजिकल प्योरिटी होता है। इसके अलावा जो है जेनेटिकल प्योरिटी एक होता है, जैसे आपने जो कैबेज लगाने जा रहे हैं तो कैबेज में जो कई सारी वैरायटी आती है जैसे BC76 है, इसके अलावा हिमलता है, हिमसोना है, तो किसान भाइयों को मालूम होना चाहिए कि मैं जो है BC76 लगाने जा रहे हैं तो उसमें जो BC76 का गुण है कि नहीं, इस तरह का जो है सीड आपको जो है लेना चाहिए। इसके अलावा आपका जो है करीब जो मॉइस्चर कंटेंट, कोई भी जो है मॉइस्चर कंटेंट है, यानी कि जब हम सीड को जो स्टोर करते हैं, जैसे आप सीड को कोई किसान भाई मिर्चा वगैरह का सीड जैसे या मूली वगैरह का सीड स्टोर करते हैं तो उसमें जो 7-8% तक नमी होना चाहिए। अगर इससे जो है ज्यादा नमी होगा तो उसमें जो फंगस लग जाएंगे तो वो जो है सीड जो है खराब होता है। तो जब आप किसान भाई सीड तैयार करके आप स्टोर करेंगे तो उसमें 7-8% से ज्यादा नमी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जर्मिनेशन कैपेसिटी ऑफ द सीड, जो हम सीड यूज करेंगे खेत में उसका जर्मिनेशन क्षमता जो है करीब 90-100% होना चाहिए। इससे कम अगर होता है तो जो अच्छा सीड नहीं माना जाता। इस तरह से हम जो सीड का चुनाव करते हैं। इसके बाद किसान भाई जब आप जो है सीड को जो है इस खेत में जो है लगाते हैं तो आप देखते हैं कि कई बार जो सीड जो है जर्मिनेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई जो है बहुत सारे जो फंगस के जीवाणु जो है हमारे जमीन में रहते हैं वो जो है उस सीड को जो खा करके नष्ट कर देते हैं। तो किसान भाई कहते हैं कि हमारा सीड खराब था या बाजार से लिए रहते हैं तो बोल देते हैं कि जो सीड खराब था, जर्मिनेट नहीं हुआ। तो किसान भाई जब कोई भी सीड आप लगाए सब्जी का, जैसे कैबेज हो गया, कैलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली हो गया, टोमेटो हो गया, मिर्चा हो गया, तो उसको जो है दवा से ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए एक दवा होता है आपका कैप्टन दवा है, उसके बाद थीरम है या बाउस्टीन होता है। ये सब दवा जो है पाउडर के रूप में आता है और 1 kg सीड में जो है 3 ग्राम दवा लगता है। किसान भाई जो है ज्यादा ज्यादा 10 ग्राम या 20 ग्राम यूज करते हैं तो बहुत थोड़ा जो है दवा आपको चाहिए। तो सबसे पहले तो आप जो सीड जो यूज करेंगे उसको जो एक फर्श पर रख लीजिए, उसमें हल्का सा पानी छिड़क दीजिए। हल्का सा पानी छिड़कने के बाद आप जो उस दवा का जो पाउडर है उसको जो उसके ऊपर छिड़क दीजिए हाथ से, और हाथ में आप जो है ग्लव्स पहन करके तब जो है छिड़किए। छिड़कने के बाद जो है हाथ से पूरे जो है दवा को जो है बीज में मिला लीजिए। तो इसको मिलाने के बाद आप देख दे करीब जो आधा 1 घंटा आप रख दीजिए, सूख जाए दवा उस पे सीट के ऊपर चिपक जाए तब उसको जो सोइंग करना जरूरी होता है। तो सोइंग करने से पहले खेत में आप सोइंग करेंगे या नर्सरी में सोइंग करेंगे तो उसको जो है सबसे पहले सीड बेड, जैसे आप किसान भाई कैबेज या कैलीफ्लावर या मिर्चा का जो है पौधा तैयार करते हैं तो सबसे पहले उसका पौधा तैयार करने के लिए आपको सीड बेड बनाना जरूरी होता है। तो सीड बेड वह स्थान होता है जहां पर आपका बीज अंकुरित होता है और जिसके माध्यम से वो अपनी जड़ से खाद, पानी ये सब लेकर के आगे जो है डेवलप करता है। तो सीड बेड के जो है क्या लक्षण होने चाहिए? बीज आप जहां जिस खेत में डालेंगे उसमें जो है नमी की मात्रा होनी चाहिए खेत में, यानी आपका जो है मिट्टी में मॉइस्चर काफी अधिक पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए ताकि वो जो बीज के संपर्क में आ जाए। अगर आप जो सूखा मिट्टी में जमीन में बीज डाल देंगे तो जो है जर्मिनेट नहीं हो पाता क्योंकि उसको जो नमी नहीं मिल पाता है। और मिट्टी जो है जो सीड बेड का मिट्टी होता है वो ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर टाइट होगा तो उसमें जो अंकुरण होगा तो उसका जो जड़ निकलेगा और जो है मिट्टी में फैल नहीं पाएगा। तो इसलिए मिट्टी जो है मुलायम होनी

चाहिए। और जो है सीड बेड की मिट्टी में जो है पर्याप्त मात्रा में नमी हो, वायु होना चाहिए, ताकि जो है पोषक तत्व तो जो है पौधे जो है वो ले सके। इसके अलावा जो है कोई भी जो है बीमारी वगैरह के रोगाणु भी नहीं होना चाहिए, इसलिए जो है पहले जो है सीड बेड में थोड़ा बहुत दवा भी डाल देना जरूरी होता है। इसके अलावा जो है खरपतवार वगैरह भी उस सीड बेड में खरपतवार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर खरपतवार रहेगा तो आप कोई भी खाद या उर्वरक डालेंगे तो जो खरपतवार भी उसको ले लेगा, जिससे आपका जो पौधा जो है कमजोर होगा। और जो है मिट्टी की जो ऊपरी सतह या लेयर होता है वो भी टाइट नहीं होना चाहिए, अगर वो टाइट हो तो पहले जो बीज डालने से पहले उसको जो तोड़ देना चाहिए, बहुत जरूरी होता है तोड़ना। तो इस तरह से जो आपका सीड बेड का जो एक करेक्टरिस्टिक्स होता है। इसके अलावा किसान भाई मैं देखता हूं कि आपका जो है ग्रीन मैन्योरिंग, आप किसान भाई कोई भी रासायनिक खाद वगैरह डालते हैं तो रासायनिक खाद वगैरह आप डालते हैं तो जब तक मिट्टी का फिजिकल कंडीशन सही नहीं रहेगा तो खाद जो है पौधों को नहीं मिल पाता है। तो इसलिए या तो आप जो है देसी खाद डाले खेत में, या तो जो ग्रीन मैन्योरिंग जैसे हरी खाद होता है, हरी खाद में आपका सनई हो गया, ढैचा हो गया, सोयाबीन हो गया, उर्द मूंग की दाल हो गया, इसकी जो है सबसे पहले आप जो है बुआई कर दीजिए। बुआई करने के बाद जब आप देखते हैं कि उसमें 50% जो है फूल निकल आता है तो उसमें उसको जो काट करके फिर खुदाई करके मिट्टी में पलट दीजिए, तो इससे हमारा जो है काफी अधिक जो है उत्पादन में आपका लाभ मिलता है। तो ग्रीन मैन्योरिंग से आपको क्या क्या फायदा होता है, इससे आप जो है मिट्टी में जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ती है। अगर जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है मिट्टी में तो उसमें जो हमारे सूक्ष्म लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी भी संख्या जो है बढ़ जाती है। तो हमारे लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं जो वायुमंडल में हमारा जो नाइट्रोजन होता है, खाद होता है, उसको जमीन में फिक्स करते हैं, उससे वो जो पौधों को जो है खाद के रूप में पौधा उसको यूज करता है। इसके अलावा जो मिट्टी में आपका जो पोषक तत्व होते हैं उसको जो जीवांश पदार्थ जो है पौधों को उपलब्ध कराता है, जिससे वो जो है भोजन के रूप में काम आता है। इसके अलावा जो है मिट्टी में जो खरपतवार होता है, खरपतवार को जो है ग्रीन मैन्योरिंग आप करते हैं तो इसमें खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। और जो है मृदा का जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है ग्रीन मैन्योरिंग करने से आपका जो वो भी सुधरता है। इसमें समझ लीजिए कि आपके जैसे बरसात के दिन में बारिश हुआ तो जो मिट्टी का जो पार्टिकल होता है वो जो अलग अलग रहता है, तो जब आप जो उसमें ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं तो उसमें जो पार्टिकल को बांधे रखता है आपस में, तो उससे जो पानी भी नहीं बहने पाता है बारिश का पानी, तो उससे मिट्टी में जो है आपका नमी अधिक दिन तक बना रहता है। और जो ग्रीन मैन्योरिंग करने से आपका जो फसल की पैदावार में करीब 10-60% तक वृद्धि होती है। इसके बाद आप जो है प्रॉपर यूज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, जैसे मैंने शुरू में किसान भाइयों को बताया कि कोई भी आप जो है सब्जी की फसल लगाएंगे तो उसमें जो मिट्टी की जांच करा करके तब आप खाद और उर्वरक डालें, तो वही जो है जो भी फसल आपने लगाने जा रहे हैं सब्जी की, जैसे आपका कैबेज हो गया, कैलीफ्लावर हो गया, टमाटर हो गया, मिर्चा हो गया, भिंडी हो गया, तो हर एक जो है फसल को जो है खाद और उर्वरक की मात्रा जो है अलग अलग चाहिए। तो किसान भाई को मैं बताना चाह रहा हूं कि आप जो मिट्टी की जांच करा करके उस फसल को जो है खाद और उर्वरक दिए, क्योंकि अगर आपने जो कम खाद और उर्वरक देंगे अंदाज से दे देते हैं तो आपका जो पैदावार भी कम मिलेगा। अगर जो आपने ज्यादा दे दिया तो इसमें आपका जो पैसे की हानि हो जाती है, इससे भी आपको जो है प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो है किसान भाई जैसे बायो फर्टिलाइजर जो जैव उर्वरक होता है उसका जो खेत में यूज प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर तवांग में मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ज्यादातर एसिडिक सॉइल होता है, तो एसिडिक सॉइल में होता है कि आयरन और एल्युमिनियम जो है तत्व तो पाए जाते हैं, तो हम कोई भी जो है उर्वरक अब डालते हैं तो इसमें का जो फास्फोरस होता है आयरन और एल्युमिनियम उसको जो है फिक्स कर लेता है, यानी पकड़ के अपने पास रखता है, उसको पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो उसको जो है पौधों को लेने लायक बनाने के लिए पीएसबी यानी फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया करके एक जो है बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक आता है, 5 kg आप जैव उर्वरक पीएसबी लीजिए और उसको जो करिए जो है 30-40 kg गोबर की खाद में आप मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद आप जो पूरे जो एक हेक्टेयर में उसको जब खेत की जुताई करते हैं उस समय पूरे मिट्टी में आप मिला दीजिए, तो इसमें हमारा जो फास्फोरस अनुपलब्ध रहता है खेत में वो जो पौधों को उपलब्ध हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम जो है बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करके हम अधिक पैदावार ले सकते हैं। इसके बाद रिकमेंडेड डोज ऑफ सीड रेड, किसान भाई मैं देखता हूं कि आप लोग जो है ऐसे अंदाज से जो है एक हेक्टेयर या एक एकड़ में जो है सीड जो है डाल देते हैं, लेकिन ये जो है तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे डाल देंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो है एक हेक्टेयर के लिए जैसे कैबेज एक हेक्टेयर लगाने जा रहे हैं तो उसमें जो 500 ग्राम सीड चाहिए, तो अगर 500 ग्राम सीड आप जो है उससे ज्यादा डाल देंगे तो आप जो पौधा जो है पास हो जाता है, तो उससे आपका जो है पौधे की ग्रोथ जो है कम होती है, आपकी पैदावार अधिक नहीं मिल पाती है। इसके अलावा जो कम सीड रेट डाले तो उससे हमारा जो प्लांटिंग डिस्टेंस होता है वो ज्यादा दूर दूर पर हो जाता है, इससे भी हमारी जो पैदावार कम मिलती है। तो किसान भाइयों को ध्यान देने की जरूरत है कि एक हेक्टेयर के लिए जितना हमारा सीड की मात्रा निर्धारित की गई है उतना जो है यूज करें।

कि हमको जो है अधिक से अधिक पैदावार मिल सके। इसके बाद टाइम एंड मेथड ऑफ सोइंग, ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। जो फसल जो है जिस समय जो है बुआई की जाती है उससे इस समय उसको जो है लगाना चाहिए। अगर उससे जो है हट करके आप लगाएंगे तो उससे जो है कि पैदावार उसको जो है करीब जो है तापमान जलवायु जो है नहीं मिल पाता अच्छी तरह से, तो उससे जो है पैदावार कम होते हैं। इसके बाद मेथड ऑफ सोइंग, जैसे किसान भाई आते हैं कि यहाँ पर ज्यादातर छिड़क करके सोइंग करते हैं सब्जी वगैरह का भी, यानी कि लाइन से आप जो है ट्रांसप्लांटिंग नहीं करते हैं। इसका जो लाइन से ट्रांसप्लांटिंग करने से आपको फायदा है कि उसमें आपको जो है खाद जो है निकालने में आपको सुविधा रहेगी। प्लस जो है आप जो है लाइन अगर ईस्ट और वेस्ट, मतलब कि जिस तरफ से आपका धूप निकलता है उस तरह से आप जो है लाइन लगाएंगे, उस तरफ से शुरू करेंगे तो आपको जो है धूप जो है दिन भर मिलेगा। क्योंकि आपको धूप जो है पौधों को जो कम मिलेगा तो उसमें जो है भोजन नहीं बन पाता है, जिससे जो आपका पैदावार कम हो जाती है। तो किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि आप जो है लाइन से जो है कोई भी सब्जी की फसल हो उसको जो है लाइन से लगाना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद इंटरक्रॉपिंग, जैसे किसान भाई देते हैं कि अगर आप जो है बैंगन हो गया, टमाटर या मिर्चा खेत में लगा रखे हैं तो इसमें करीब 2-2.5-3 महीने बाद आपका पैदावार शुरू होता है, मतलब कि फल आना शुरू होता है। उस खेत में जो काफी जगह खाली रहता है तो उसमें आपका धनिया हो गया, गाजर, मूली, पालक, मेथी, ये सब किसान भाई लगा देंगे तो उससे होता कि आपका जो है ये सब 2 महीने में आपका तैयार हो जाएगा, तो इससे आपको अतिरिक्त लाभ मिल जाता है। इंटरक्रॉपिंग भी करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद तो वाटर मैनेजमेंट, तो जैसे यहाँ पर जो है जब सब्जी खेती करते हैं तो आपका जैसे फरवरी में नर्सरी डालते हैं, फिर मार्च से तो यहाँ पर बारिश शुरू हो जाता है, तो किसान भाइयों को देखना जरूरी होता है कि अगर बारिश जो है बीच में करीब 15-20 दिन बारिश नहीं हुआ, आपका जो गैप हो गया, तो हमारी जो सब्जी फसल आपने लगा रखी है तो उसमें जो कहीं से भी आपको पानी देने की बहुत जरूरी होता है। नहीं, अगर पानी नहीं देंगे तो आपका फसल जो है सूख जाएगा, इससे पैदावार कमी होती है। तो किसान भाई अभी जो है गवर्नमेंट ने वाटर स्टोरेज टैंक का जो है स्कीम चला रखी है, तो किसान भाइयों जो एग्रीकल्चर ऑफिस है वहां पर ये स्कीम है, तो आप लोग जो है वहां से आकर के जानकारी लेकर के आप जो है टैंक बना सकते हैं। तो इसमें टैंक में होता है कि आपके बारिश के दिन में पानी जो है इकट्ठा कर लीजिए, और जो है जब बारिश का पानी जो है नहीं होता है या गैप हो जाता है बारिश के दिन में पानी का, तो उसमें आप जो है उस पानी से जो है पंप के द्वारा आप जो है सिंचाई कर लीजिए, इससे आपका जो है पैदावार जो है कम नहीं होने पाता है। इसके अलावा कहीं कहीं हम देखते हैं कि कहीं पर जहां पर प्लेन जमीन है आपका तवांग डिस्ट्रिक्ट में, तो बारिश के दिन में आपका जो पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वहां पर किसान भाइयों को उस पानी को जो है बाहर निकालने का भी व्यवस्था करना चाहिए। अगर वो पानी जो है बाहर नहीं आप निकालेंगे तो उससे जो हमारा सब्जी की फसल जो होती है वो जो है नष्ट हो जाती है। इसलिए जो वाटर मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी होता है अधिक पैदावार के लिए। इसके अलावा जो आपका जो वीड कंट्रोल या खरपतवार नियंत्रण, तो खरपतवार नियंत्रण अगर आप किसान भाई देखते हैं कि हमारे जो भी फसल आपने लगाया है, जैसे एक खेत में आपने जो कैबेज लगा रखा है तो कैबेज के अलावा जो भी उसमें जो है आपका कोई भी फसल उग जाता है, कैबेज के अलावा उसमें आपका मूला आ गया किसी तरह से पुराना सीड से आ गया, या तो आपका मड़ुआ आ गया, मकई आ गया, तो वो सब जो है बीट कहलाता है, यानी खरपतवार कहलाता है, तो उसको जो है खेत से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। अगर उसको आप नहीं निकालेंगे तो हमारा जो है पैदावार करीब 50-70% तक कम हो जाता है, क्योंकि आपका जो है जो खरपतवार है वो जो है हमारे जो है कई तरह से फसल को जो है नुकसान पहुंचाता है। जैसे आपका मिट्टी का जो नमी होता है, अगर खेत में आपका खरपतवार है तो जो पानी होता है उसको भी आपका खरपतवार लेगा, उससे आपका जो पैदावार रुक जाता है। इसके अलावा जो मिट्टी में आपने जो खाद वगैरह डाल रखा है, अगर उस खेत में खरपतवार है तो उस खरपतवार भी आपका खाद और उर्वरक लेगा, और जिससे हमारे जो पौधों को जो कम खाद और उर्वरक मिल पाएगा उससे जो आपकी पैदावार कम हो जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब फसल के अंदर में खरपतवार रहता है तो उसमें रोग और कीड़े बहुत आ जाते हैं, क्योंकि जो उसको रहने के लिए वहां पर सरण मिल जाता है, मतलब कि आपका स्टे करने के लिए जगह मिल जाता है खरपतवारों में, तो वो जो है फिर खरपतवार पे रह करके हमारी जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए खरपतवार को खेत से निकालना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा किसान भाई आपका जो प्लांट प्रोटेक्शन मेजर आता है, जैसे प्लांट प्रोटेक्शन मेजर ये होता है कि जैसे इसमें दो पार्ट हैं, एक तो जो है डिजीज हो गया, दूसरा जो है कीड़े हो गया। तो हम देखते हैं कि जो सब्जी की फसल होती है यहाँ पर जब बारिश के दिन में खेती करते हैं तो बहुत सारे कीड़े भी लगते हैं और बहुत सारी बीमारियां भी है फसल में अटैक करती है। तो किसान भाइयों को तो ये तो मालूम नहीं कर पाते हैं किसान भाई कि इसमें जो है कौन सी बीमारी लगी हुई है। तो किसान भाई जैसे कि यहाँ तवांग में जो है जिला कृषि अधिकारी का ऑफिस है प्लस जो है कृषि विज्ञान केंद्र है, तो आप जो है तवांग आते हैं तो जो आपने सब्जी की फसल लगा रखी है उसमें आप देखते हैं कि कोई हमारा जो है इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप एक पौधे को पत्ती को या पूरे पौधे को आप जो है लेते आइए, तो यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र में या जिला कृषि अधिकारी के ऑफिस में आप लोग को जो है बता दिया जाएगा कि आप जो कि खेत में बीमारी लगा है या एक कीड़ा लगा हुआ है और आप ये दवा जो है यूज करें, तो उससे आपका जो है

प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो जैसे कि आपका सब्जी की फसल है, इसमें आपका गोभी वगैरह हो गया, ये तो जो है एक समय में सारा तैयार हो जाता है। प्लस जो आपका टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, मिर्चा हो गया, ये सब जो है कई बार में तोड़ने लायक होता है। तो हम देखते हैं कि जो फल जो है पहले लगता है, वो जो पहले पक के तैयार हो जाता है, तो उसको जो पहले तोड़ लेना चाहिए, जो बाद में तैयार होता है उसको जो थोड़ा बाद में तोड़े। तो इस तरह से किसान भाई जो हार्वेस्टिंग जो है करना चाहिए। हार्वेस्टिंग करने के बाद आपको जो किसान भाई जैसे बताया था कि आपका जो है मार्केट में अधिक जो है दाम लेना है, तो उसको जो ग्रेडिंग करना बहुत जरूरी होता है। ग्रेडिंग करना का मतलब यह है कि जैसे एक साइज का जो सब्जी है उसको जो आप अलग करिए, उससे छोटे साइज का है उसको अलग करिए, कि इस तरह से तीन ग्रेड आप बना लेंगे। तीन ग्रेड बना लेने से यह होता है कि आपका जो सबसे अच्छा ग्रेड है उसको जो अच्छा रेट मिलेगा, और जो मीडियम ग्रेड वाला है उसको थोड़ा कम मिलेगा रेट, और जो सबसे लो ग्रेड का है उसको थोड़ा और कम मिलता है रेट। तो इस तरह से आपको जो है अगर पहले जो ग्रेडिंग करके मार्केट में ले जाएंगे, तो इसलिए किसान भाइयों को चाहता है कि जो भी सब्जी आप जो तैयार होता है उसको आप ग्रेडिंग करके तब मार्केट में ले आइए, तो इससे आपको जो अधिक फायदा मिलेगा। तो आज के परिचर्चा में मैं किसान भाइयों को बताया कि किस तरह से आपका सब्जी

0: जो मीडियम ग्रेड वाला है उसको थोड़ा कम मिलेगा रेट, और जो सबसे लो ग्रेड का है उसको थोड़ा और कम मिलता है रेट। तो इस तरह से आपको जो है अगर पहले जो ग्रेडिंग करके मार्केट में ले जाएंगे, तो इसलिए किसान भाइयों को जाता है कि जो भी सब्जी आप जो तैयार होता है उसको आप ग्रेडिंग करके तब मार्केट में ले आइए, तो इससे आपको जो है अधिक फायदा मिलेगा। तो आज के परिचर्चा में मैं किसान भाइयों को बताया कि किस तरह से आपका सब्जी की खेती करें ताकि जो अधिक पैदावार मिले।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट श्री चंद्र कुमार सिंह से वार्ता। वार्ता का विषय था सब्जी की खेती की पैदावार में बढ़ोतरी लाने के लिए वैज्ञानिक तरीके। इसके साथ आज का कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:30 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम फौजी वायु के लिए फिल्म संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म कयामत से कयामत तक से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। शब्द रचना है मजरू सुल्तानपुरी की। वह संगीत है आनंद मिलन का।

श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे गुलजार द्वारा शब्दबद्ध फिल्म सैम बहादुर से। शंकर महादेवन, विशाल ददलानी और दिव्या कुमार की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा है शंकर, एहसान और लॉय ने।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 7:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित प्रादेशिक समाचार और 7:50 पर रीजनल न्यूज।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मीराबाई चानू से मुलाकात की और ग्लासगो में लगातार तीसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने मीराबाई चानू के दृढ़ संकल्प और अथक परिश्रम की सराहना करते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि देशभर विशेषकर पूर्वोत्तर के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। बैठक के दौरान उच्च प्रदर्शन वाले खेलों से जुड़े विभिन्न विषयों जैसे प्रशिक्षण, पोषण, रिकवरी तथा खिलाड़ियों को प्रदान किए जाने वाले सहयोग पर भी चर्चा की गई। श्री सिंधिया ने कहा है कि पूर्वोत्तर में खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की उच्च स्तरीय कार्यबल तथा वन स्टेट वन स्पोर्ट पहल के माध्यम से केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड ने आज ईटानगर स्थित लोकभवन में ईटानगर नगर निगम आईएमसी मेयर श्रीमती लिखा नारी तादार को उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रतिष्ठित लैंड ऑफ द राइजिंग सन मेडेलियन फॉर एक्सेलेंस से सम्मानित किया। यह सम्मान नागरिक सेवाओं को सुदृढ़ करने, स्वच्छता एवं सफाई को बढ़ावा देने तथा राजधानी क्षेत्र के निवासियों के जीवन में सुधार लाने के संबंधित पहलों में उनके समर्पित नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया। राज्यपाल ने मेयर तथा आईएमसी की पूरी टीम की प्रतिबद्धता और सक्रिय कार्यकौशल की सराहना करते हुए नगर सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में हुई प्रगति की प्रशंसा की। राज्यपाल ने आईएमसी से जन केंद्रित पहलों को जारी रखने तथा शहरी प्रशासन में नवाचार और प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों को अपनाने का आह्वान भी किया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय समन्वय समिति डीएलसीसी की बैठक आज यूपिया स्थित डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में पपुम परे उपायुक्त एवं डीएलसीसी की अध्यक्ष हागे मामू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने कानून के प्रभावी प्रवर्तन को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया और राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम तथा सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम कोटपा के जिला नोडल अधिकारी डॉ. लोपसांग चुकी को कोटपा अधिनियम की धारा 4 के प्रवर्तन के लिए अधिकृत अधिकारियों की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए ताकि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान से संबंधित उल्लंघनों पर वे जुर्माना लगाकर उसकी वसूली कर सके। सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुरुंकुमे जिले के होरी क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़क संपर्क व्यवस्था को सफलतापूर्वक बहाल कर दिया गया है। इसके लिए संगठन ने 200 फीट लंबा वैली ब्रिज स्थापित किया, जहां गत 11 जुलाई 2026 की रात आई अचानक बाढ़ में वहां का मौजूदा पुल बह गया था, जिसके कारण पूरा क्षेत्र अन्य स्थानों से कट गया, जिसे लोगों की आवाजाही, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तथा आपातकालीन सेवाएं बाधित हुई। संपर्क बहाली का कार्य प्रोजेक्ट अरुणांक द्वारा मिशन मोड में अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच किया गया। 85 आरसीसी और 756 बीआरटीएफ की बीआरओ टीम ने लगातार हो रही बारिश, तेज नदी प्रवाह और अस्थिर मिट्टी जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए पुल निर्माण के कार्य को पूरा किया। इस बीच होरी के निवासियों ने संपर्क बहाली होने पर बीआरओ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये संपर्क उनकी आजीविका और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तवांग जिले के पशुपालन, पशु चिकित्सा एवं डेयरी विकास विभाग में भारतीय सेना के सहयोग से आज तवांग के यांगसे में समुद्र तल से 15,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित दोपोखार में याक के लिए फुट एंड माउथ डिजीज FMD टीकाकरण अभियान शुरू किया। 3 दिवसीय इस अभियान का उद्देश्य लगभग 300 याक को इस रोग से सुरक्षित करना है। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 3 जिलों अपर सुबनसिरी, शिओमी और अपर सियांग को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए येलो, साथ ही 6 जिलों ईस्ट कमिंग, कुरुंकुमे, लेपारादा, ईस्ट सियांग, लोहित और लोंगडिंग के लिए ऑरेंज, साथ ही पापुमपारे जिले के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बीरी धाकर ने ब्राजील में आयोजित BWF पैरा वर्ल्ड सर्किट प्रतियोगिता में 2 पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। बीरी धाकर ने पुरुष युगल वर्ग में स्वर्ण पदक तथा पुरुष एकल वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।

0: a serious threat to the livelihood and economy of the Brokpa community, whose primary source of income and sustenance is yak rearing. The India Meteorological Department has issued red alert warning for Papumpare and orange alert warning for East Kameng, Kurungkume, Leparada, East Siang, Lohit and Longding. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित रीजनल न्यूज। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं एक देशभक्ति गीत। फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह से सोनू निगम और मनमोहन वारिस की आवाज में शत्रुघ्न समीर के व संगीत ए आर रहमान का।

फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के संगीत के साथ कार्यक्रम देशभक्ति गीत यहीं पर समाप्त हुआ। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के 8 बज चुके हैं। श्रोताओं अब प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइश गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से। शब्द रचना है अनजान की व संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत की हमें फरमाइश की है पैगाम लो से आपे पे मटा शीतिन दवा नाको तिंदिन संगे हम यांचिन और तुमची।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म कन्यादान से मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द रचना है गोपाल दास, नीरज के वसंगीत है शंकर जयकिशन का। इस गीत की हमें फरमाइश किए है मंडलिंग बस्ती से आप है तंजिन डोलकर सरगिरिपा।

श्रोताओं आप सुन रहे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म चा चा चा से मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द रचना है नीरज के, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म पहली तारीख से किशोर कुमार की आवाज में। शब्द रचना है कमार, जलालाबादी के वसंगीत है सुधीर फाड़के का।
1: दिन है सुहाना आज पहली तारीख है, दिन है सुहाना आज पहली तारीख है, खुश है जमाना आज पहली तारीख है, पहली तारीख है जी पहली तारीख है।

वो पैसा जरा लाना, वो पैसा जरा लाना, लाना लाना, वो पैसा जरा लाना, आज पहली तारीख है, खुश है जमाना।

0: बड़े ही शरीफ हैं पुराने।
1: श्रोताओं, इस गीत की हमें फरमाइश की है, शिव गांव से आप है श्री राम गोंदाली और उषा गोंदाली, और कोपर गांव से आप है सुरेश मलोड़े और वर्षा मलोड़े।
0: मेहरबान है बड़े ही शरीफ है पुराने मेहरबान है, अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को बचाना आज पहली तारीख है, कुछ है।

0: दादा है, भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है।
1: पांच आने का दसाना, पांच आने का दसाना, पांच आने का दसाना,
0: अरे वापस नहीं जाना, जाना जाना, वापस नहीं जाना।

0: जमाना आज पहली तारीख है, पहली तारीख है जी पहली तारीख है, दिन है सुहाना आज पहली तारीख है, कुछ है जमाना आज पहली तारीख है, पहली तारीख है जी पहली तारीख है।
1: श्रोताओं, इससे पहले आपने फिल्म चा चा चा से गीत सुना था, उसकी हमें फरमाइश की थी। चंडीगढ़ से आप सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, और मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से आप हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। श्रोताओं, आपसे मैं आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइश गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे फिल्म गबन से मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने। इस गीत की हमें फरमाइश की है जलालाबाद वेस्ट से आप है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूले, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा ये रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ।

श्रोताओं आपकी सेवा में आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। आपसे थोड़ी देर में यानी 8:30 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ @9।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शक्ति सिंह। एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों के भव्य समापन समारोह की, जहां भारतीय खिलाड़ियों के बाद भारतीय संस्कृति की झलक दुनिया ने देखी है और भारत ने एक और कदम बढ़ाया है 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की दिशा में। और गुजरात का अहमदाबाद तैयार है विश्व के दूसरे सबसे बड़े

आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों के भव्य समापन समारोह की, जहां भारतीय खिलाड़ियों के बाद भारतीय संस्कृति की झलक दुनिया ने देखी है और भारत ने एक और कदम बढ़ाया है 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की दिशा में। और गुजरात के अहमदाबाद तैयार है विश्व के दूसरे सबसे बड़े खेल आयोजन के लिए। इसके बाद कार्यक्रम में बात होगी भारतीय दल के प्रदर्शन की, जिसने सीमित अवसरों पर बड़ी सफलताओं में बदलकर 39 पदक देश के खाते में जोड़े और ध्वस्त किया है कई स्थापित कीर्तिमानों को। कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस प्रतियोगिता की, जिसका कल भव्य समापन हुआ नई दिल्ली में। और अंत में नजर डालेंगे दक्षिण कोरिया में भारतीय चुनौती रखने जा रही देश की बैडमिंटन टीम पर। सबसे पहले कार्यक्रम में आज बात की जाए राष्ट्रमंडल खेलों की, जिनका कल भव्य समापन समारोह के साथ समापन हो गया। इसके साथ ही भारत को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की औपचारिक मेजबानी सौंप दी गई है। इस भव्य समापन समारोह के दौरान भारत के शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक देखने को मिली, जहां भारतीय गायक शंकर महादेवन, ऋषभ शर्मा और भूमि त्रिवेदी ने अपनी आवाज से ग्लासगो में शानदार समा बांधा। सुनते हैं अतर सईद की ये रिपोर्ट।

0: दर्शकों से खचाखच भरे ग्लासगो के ओवीओ हाइड्रो में कल 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो गया। वंदे मातरम, शिव स्तोत्र और मशहूर गाना सुनो गौर से दुनिया वालों पर हजारों भारतीय दर्शक अपनी जगह पर खड़े होकर झूमते नजर आए। विदेशी दर्शकों ने भी भारतीय कार्यक्रमों का भरपूर लुत्फ उठाया। इस दौरान राष्ट्रमंडल मशाल स्कॉटलैंड से भारत को सौंपे जाने के समय स्टेडियम का दृश्य देखने लायक रहा। इस शानदार समारोह ने खेलों के 11 यादगार दिनों का समापन किया और राष्ट्रमंडल अभियान के एक नए अध्याय का आगाज किया। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी को राष्ट्रमंडल खेलों का झंडा प्रतीकात्मक रूप से सौंपे जाने के साथ ही 2030 में अहमदाबाद में खेलों के ऐतिहासिक शताब्दी संस्करण की मेजबानी की दिशा में भारत की यात्रा की भी शुरुआत हो गई। भारतीय स्टार जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा को भी CWG ध्वज थमाया गया।
1: अहमदाबाद में 2030 में 100वां कॉमनवेल्थ गेम्स खेला जाएगा और हाल ही में प्रतिनिधित्व करने के लिए मौजूद है भारत से गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, पीटी उषा जो प्रेसिडेंट है कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गुजरात के हर्ष संघ।
0: समापन समारोह में स्कॉटलैंड की संस्कृति की भी बड़ी झलक देखने को मिली। मशहूर रॉक बैंड सिंपल माइंड्स, डांस ग्रुप डाइवर्सिटी और कई मशहूर स्थानीय कलाकारों ने संगीत, नृत्य और विजुअल स्टोरी टेलिंग के जरिए ओवीओ हाइड्रो में धूम मचाई। इसके बाद भारतीय संगीतकार ने अलग अलग गानों पर अपनी प्रस्तुति देकर पूरे अरीना में समा बांध दिया। राष्ट्रमंडल मुक्केबाजी चैंपियन जैस्मिन लेम्बोरिया ने तिरंगा थामा और सभी 74 राष्ट्रमंडल देशों और क्षेत्रों के एथलीटों ने दोस्ती, एकता और खेल कौशल के जश्न में एक साथ मार्च किया। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों का झंडा औपचारिक रूप से अहमदाबाद को सौंपा गया, जो मेजबानी की जिम्मेदारी के हस्तांतरण का प्रतीक था। 2030 का आयोजन ऐतिहासिक महत्व का है क्योंकि ये कॉमनवेल्थ गेम्स की 100वीं वर्षगांठ होगी। अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की उल्टी गिनती आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है, जहां भारत दुनिया के सामने अपनी खेल और आतिथ्य की संस्कृति की शानदार झलक पेश करेगा।

0: औपचारिक राष्ट्रमंडल मशाल हाथ में थामने के साथ ही गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने जिम्मेदारी संभाल ली है। इस मौके पर श्री संघवी ने कहा कि विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस अहमदाबाद राष्ट्रमंडल खेलों के इस ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी के लिए तैयार है।
1: In 2030, the Commonwealth will celebrate its centenary. 100 years of bringing the world together through sport and India been entrusted to host the historic edition. That is a sacred responsibility we embrace with deep gratitude. Ahmedabad is ready. Our city is compact, well-connected and vibrant with possibility.
0: तो कहा जा सकता है कि तमारू स्वागत छे अहमदाबाद बिल्कुल तैयार है स्वागत करने के लिए। और इस दौरान श्री सांघवी ने कहा कि भारत बड़े वैश्विक आयोजनों के लिए उत्साहित है और वैश्विक खेल राजधानी के रूप में भारत अपनी पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: अहमदाबाद 2030 इज सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन अ लार्जर एस्पिरेशन। इंडिया इज कमिटेड टू एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ एज अ स्पोर्टिंग कैपिटल ऑफ अ ग्लोबल स्टेज। वी एस्पायर टू होस्ट द ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स इन अहमदाबाद इन 2036। द कॉमनवेल्थ गेम इज अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट एट स्केल इंडिया इज रेडीनेस टू डिलीवर वर्ल्ड क्लास स्पोर्टिंग इवेंट्स फॉर एथलीट्स, फॉर स्पेक्टेटर्स एंड फॉर द एंटायर वर्ल्ड।
0: तो भारत ने तो अपनी पहचान विश्व में बनाई ही पहचान बनाई है। उन भारतीय खिलाड़ियों ने जो जब जब ग्लासगो के मैदान पर उतरे तो उनकी नजर थी किसी पदक पे, किसी रिकॉर्ड पे, और वो सब कुछ ध्वस्त होते नजर आए एक के बाद एक। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में अपने अभियान का समापन 39 पदक के साथ चौथे स्थान पर किया, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक हैं। आइए सुनते हैं भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर ये रिपोर्ट।
2: भारत

तो आपने अतर सईद की ये रिपोर्ट सुनी और अब अहमदाबाद भी कह रहा होगा कि अहमदाबाद राष्ट्रमंडल खेल 2030 नू माटे तैयार छे। तो इसी के साथ भारत ने मेजबानी की दिशा में एक कदम बढ़ाया है और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन के साथ ही अब दुनिया की निगाहें इस अहमदाबाद की तरफ मुड़ गई हैं, जो 2030 में विश्व के इस दूसरे सबसे बड़े खेल आयोजन की मेजबानी करेगा। ग्लासगो में खेलों के भव्य समापन समारोह

0: भारत ने 23 जुलाई से 2 अगस्त तक चले इस आयोजन में कुल 39 मेडल के साथ चौथा स्थान हासिल किया। इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने हर खेल में कई ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाए और देश का गौरव बढ़ाते हुए पोडियम पर तिरंगा लहराया। एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स में देश के नाम 16 पदक रहे, इनमें 3 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदक हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत और 5,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेलों के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बने। जबकि स्टार जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक भारत की झोली में डाला। मुक्केबाजी में भारत एक महाशक्ति बनकर उभरा और सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इस खेल में भारत ने कुल 10 पदक जीते, जिनमें 3 रजत पदक भी शामिल है। भारत ने जूडो में भी अपना भरपूर दमखम दिखाया। अस्मिता डे और हर्ष सिंह दोनों ने इस खेल में पहली बार स्वर्ण पदक अपने नाम किए। जूडो में भारत ने कुल 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य से समेत कुल 4 पदक जीते। भारोत्तोलन में भारत की झोली में कुल 8 पदक आए। मीराबाई चानू इस खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकलौती भारतीय रही। पुरुषों ने 4 रजत पदक अपने नाम किए, जबकि महिलाओं ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। पैरा पावर लिफ्टिंग में झंड कुमार ने भारत के लिए पदक जीतकर पदक तालिका में देश का पर्दापण कराया। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
1: तो जब भी भारतीय खिलाड़ी उतरे, उनकी नजर थी पदक पर। और इस खेल आयोजन से पहले लगातार ये चर्चाएं थी कि कई खेलों को सूची से हटाया गया है, भारत कैसा परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन भारत ने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स से बेहतर परफॉर्मेंस किया है और देश दुनिया से, राजनीति से, सिनेमा से, हर जगत से आज इन खिलाड़ियों को, अपने इन स्टार्स को शुभकामनाएं मिल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने भारतीय खिलाड़ियों को ग्लासगो के इस यादगार प्रदर्शन पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सभी पदक विजेताओं और खेलों के दौरान योगदान देने वाले दल के प्रत्येक सदस्य को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि देश के खिलाड़ियों के भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में देश को एक और गौरवान्वित करने के मौके दिए हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का इस तरह का बेमिसाल प्रदर्शन अनगिनत युवा भारतीयों को प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय दल के ऐतिहासिक प्रदर्शन की सराहना की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पूरे खेलों के दौरान हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने बेहतरीन कौशल, दृढ़ संकल्प और समर्पण दिखाया है और उनकी ये कड़ी मेहनत हमारे युवाओं को प्रेरित करती रहेगी। खेल

0: मंत्री ने कहा है कि 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान भारत ने हासिल किया है। श्री मांडविया ने कहा कि हमें हर उस एथलीट, कोच और सपोर्ट स्टाफ पर गर्व है जिसने तिरंगे के सम्मान के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। संसद के दोनों सदनों ने भी भारतीय दल को शुभकामनाएं दी है। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने क्या कहा, सुनते हैं।
1: On behalf of the House and on my own behalf, I extend our heartiest congratulations to all the athletes, coaches, support staff, the Indian Olympic Association, the Paralympic Committee of India and the National Sports Federations. Our medal winners will surely serve as an inspiration not only to the budding sports talent in our country but also to every young Indian to pursue excellence through hard work, discipline, determination and perseverance.
0: वहीं दूसरे सदन लोकसभा में भी अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के प्रदर्शन की प्रशंसा की है।
2: 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
0: 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में भव्य समारोह के साथ समाप्त हो गई। 25 से अधिक देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन समारोह पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली को देश की खेल राजधानी बनाने का संकल्प ले चुकी है। इस दौरान उन्होंने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।
3: हमारे प्लेयर्स ने गोल्ड मेडल जीत करके दिल्ली को दिया, भारत को दिया, और हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ये बात कही है, केवल गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है बल्कि ऐसे गेम्स की मेजबानी भी करनी है। मुझे खुशी है कि दिल्ली ने ये मेजबानी बड़े मन से की है।
0: तो एक शानदार आयोजन और जिसकी भारत ने मेजबानी की है। और अब बात की जाए बैडमिंटन की, जहां कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता कल से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। हाल ही में ताइपे ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली तन्वी शर्मा और स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत इस BWF सुपर 300 प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे।
4: ताइपे ओपन का महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली तन्वी शर्मा अब कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। उनके अलावा अनमोल खरब, मालविका बंसोड, इशरानी बरुआ, श्रेयांशी वली शेट्टी, रक्षिता रामराज, अश्मिता चालिहा, तान्या हिमंत, आकर्षी कश्यप और मानसी सिंह भी महिला सिंगल्स दल का हिस्सा है। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, थारून मन्नेपल्ली, मिथुन मंजुनाथ, रौनक चौहान और सनी दयानंद पर नजरें होंगी, जबकि एस शंकर सुब्रमण्यन और तुषार सुवीर क्वालिफायर के रास्ते मुख्य ड्रॉ की राह तलाशेंगे। भारत ने पुरुष डबल्स में 3 और महिला डबल्स में 2 जोड़ियों को उतारा है, जबकि मिक्स डबल्स में भारत की 3 जोड़ियां मैदान में हैं। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो जापान में शुरू होने जा रहे अगले महीने एशियाई खेलों से पहले भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक और बड़ा मंच, जहां वो अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे सकते हैं बैडमिंटन कोर्ट पर। और अब बात की जाए कुश्ती की, जहां अजरबैजान के बाकू में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की फ्री स्टाइल टीम ने 13 पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया। इसमें 1 स्वर्ण, 4 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। सितेंद्र मलिक ने कल चैंपियनशिप के कड़े मुकाबले में रूस के सर्गेई कार्मिलियन को 3-1 से हरा करके स्वर्ण पदक जीता और 2025 के अपने अंडर 17 विश्व खिताब को भी उन्होंने बरकरार रखा है। और क्रिकेट में दिलीप ट्रॉफी की आगामी सीजन 23 अगस्त से 10 सितंबर तक बेंगलुरु के BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शुरू होगी। तो श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें आप sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में भुगतान में देरी की समस्या

0: को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कर बही साक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
3: सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
0: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
4: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
5: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
0: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के

0: उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
1: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन सुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
2: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित ओडिशा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
4: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
4: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग,

0: तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
1: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Lok Sabha passes bill to increase the strength of Supreme Court judges from 33 to 37. Rajya Sabha clears legislation to simplify dispute

होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। हम आपकी सेवा में कल फिर हाजिर होंगे दोपहर 2 बजे। तब तक के लिए कार्यक्रम निष्पादक श्रीमती संगीत समूह, तकनीकी अभियंता हिमंता स्वर्गियारी और शिखा डेक्।